जय गुरु भयन गुरु, आप सब नु गणमान स्वागत करो हूँ हमारी आज नी परबात नी सभा में। आप सब हम रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते। मो हूँ आपने हाथे आपने बोनंजलि पारेश्वर ने आज वार शुक्रवार ने तारीख 14 अगस्त 2026 नो दाड़ो है। भाई बुनो में देखी रहा हूँ कि अपने स्टूडियो ने खड़ी में परबात्मा छह वाकी के हैं। तो अब आपने शुरुआत करा परबात्मी सभा में प्रसारित धावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। भाई बुनो आज सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ती की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना थकी। इना में अपना हम रंगा आज का सुविचार ने हाथे भक्तिमय कीर्तन है। अणस क्रम में अगाड़ी बढ़ेंगा किसान भाई बुनो तक की जुड़ू कार्यक्रम खेती बाड़ी। आ कार्यक्रम आप हम ऋषकों का ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मुँह आपनी बुन अंजलि पारेश्वर ने हाथी। इनिस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत करेंगा जेने कहें बालकनु बालपन इटले कार्यक्रम सच्चा बचपन। आ कार्यक्रम आप हम ऋषकों का ठीक हाथ वगैरह प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मुँह आपनी बुन अंजलि पारेश्वर ने हाथी। मैनमोनो इनिस कड़ी में अपने अगाड़ी रुक करेंगा तमारी ने हमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं की आवाज ने आड़ी। आ कार्यक्रम आप हम ऋषकों का ठीक हाथ वगे ने 30 मिनट माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथे। इनिस कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ेंगा अपने अधिकार कानून नियम तक की जुड़ू कार्यक्रम सच्चा स्वराज। आ कार्यक्रम आप हम ऋषकों का ठीक 8 बजे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर एटले मु हमारे हाथे रहेंगा हमारा रेडियो साथी जागृति भट्ट। अणस क्रम में अगाड़ी बढ़ते तक अपना रुख करेंगा राजस्थानी गीत तक की जुड़ू कार्यक्रम लोक संगीत। आ कार्यक्रम आप हम ऋषकों का ठीक 8:30 माते। भाई बुनो बीजो कार्यक्रम शुरू थागा ठीक 9 बजे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल। इन्हें बाद भाई बुनो ठीक 9:30 माते आप हम रोगा कार्यक्रम समस्या समाधान। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट ने मो आपनी बुन अंजलि पारेश्वर। इन्हें बाद भाई बुनो मनोरंजन ने ताका पूरी भरमार जिन्हें आप हम रोगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। भाई बुनो हमारी अब तक की हिंदी मुलाकात थागा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 बजे। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। इन्हें बाद शुरू थागा आपनी पसंद नो कार्यक्रम आपकी फरमाइश जिन्हें आप हम ऋषकों का प्रभात 11 तक की बोपरनी 1 बजे मैस में। अगर आप भी अपनी फरमाइश न कीर्तन हम रुचा हो तो मने लकी न मोकली सको फिल्म नो नाम गीत ना बोल आपनो नाम ने अपना गाम नो नाम हमारे अणो व्हाट्सएप नंबर माते। हमारो नंबर है 9460051234। तो भाई बोलो आ तो हती आपड़े परबात की सभा में प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आपड़े सभा की शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना।

मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रमाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन, तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ई आबा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो घनी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
1: तो हमरो बोनो, अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है। पटवारी, सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है। फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वाग्धारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हामरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणेमान स्वागत कर रहा अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के किसान भाई बहनों अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई गए हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नवा विषय ने हाते। तो किसान भाई बहन आज हमारी आप तक की बातचीत नो विषय है कि अवड़े ना टाइम में अपनी जे फसलें हैं एनो नो ध्यान आपणे हरते राख। आपणे देखी शकं कि आपणे क्षेत्र में घणी एवी चीजें हैं जेनो नो ध्यान राखवो आपणाने जरूरी रहे। तो आज कार्यक्रम में अमारी आप तक की अणा विषय माते घणा कानी वाते थाएंगा, पण कार्यक्रम शुरू कर एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे कर आपणी वाते। तो किसान भाई बहन आप हमरते रहजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: किसान भाई बोनों गीत तो आयशु पुरू ने अणस गीत बात एक वगत फिरी आप सबनों घणे मान स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में जिम की किसान भाई बोनों अमे आपने गीत की पहले विषय बताड़ियो तू के आज आपणे वात करवा वाला हां के आपणे खेतर में अवड़ेना टाइम में आपणे कई कई बातनु ध्यान राखवू सु है। तो किसान भाई बोनों अणा विषय माते जानकारी आलवा बल्ले आज आपणे स्टूडियो में पधारे तक है श्रीमान प्रमोद जी रोकड़िया साहब। तो सप्ते की पहले आपणे हामरी लेना नी वात मोरे कर आपणी वात। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: वागड़ रेडियो के सभी किसान भाई और श्रोतागण सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
0: जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि अगस्त का महीना चल रहा है और इसी बीच हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनकी खेती में कहीं सारे परिवर्तन उन्हें देखने को मिलते हैं। हम देखते हैं कि अभी के समय में उनके खेतों में जो कीटों का प्रकोप है वो भी बढ़ जाता है, खरपतवार भी हो जाता है, साथ ही उन्हें कभी कभी खेतों में फसलों की तरफ से कोई समस्या भी होने लगती है। तो आज कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो अभी के समय में अपनी फसलों की देखभाल करें।
1: किसान भाइयों, अभी खरीफ का महीना चल रहा है और बारिश के आधार पर अपनी खेती चल रही है। तो जो हमने अभी जो अपने खेतों पर फसल की हुई है जैसे कि मक्का की हुई है, सोयाबीन की हुई है, धान किया हुआ है, इसके अलावा हमारे मिश्रित फसल के अंदर मिश्रित खेती जो हम करते हैं तो उसमें हमने कई सारी फसलें हमारे खेत में छोटे से जो बीघा दो बीघा और पांच बीघा के खेत हैं उसमें कई सारी फसलों का समावेश किया हुआ है जो उसको अपन मिश्रित खेती कह रहे हैं, जिसमें मक्का भी है, धान भी है, तिल भी है, मूंगफली भी है और इसके अलावा जितने कपास भी है, सोयाबीन भी है। कई सारे खेत हमारे जो कुशलगढ़ साइड में या आनंदपुरी या सज्जनगढ़ की तरफ हैं जहाँ पर बारिश के आधार पर ज्यादातर खेती होती है वो मिश्रित फसल की खेती भी करते हैं। तो इस समय जो क्योंकि बारिश का भी मौसम चल रहा है और फसलों के अंदर फूल आने की अभी समय आने वाला है, कईयों में फूल आ भी गया, अगर जल्दी बुआई हुई है जैसे जून के अंदर बुआई हुई आखिर में तो फूल आ भी गए, लेकिन अगर लेट है तो फूल आने की बात भी हो रही है। तो इस समय में हमें जो बारिश के आधार पर खेती करनी पड़ रही है और बारिश के आधार पर हमें जो हमारा खेत का जो सबसे मुख्य जो है वो खरपतवार नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि अगर खरपतवार का जो प्रतिस्पर्धा फसल के साथ में जो हमारी मुख्य फसल के साथ में अगर खरपतवार अगर लग रहे हैं तो हमारा जितना भी आदान या जितना भी हम खाद है या फसल पर दवाई है या हम फसल के लिए मुख्य फसल के लिए देते हैं लेकिन वो हमारी खरपतवारों के जो पौधे हैं उसमें उपयोग के लिए हो जाती है। तो उसमें क्या हमारा जो जितना भी हमारा उर्वरक है, जितना भी हम चाहे जैविक उर्वरक देते हैं तो उसमें हमारा उन उर्वरकों का बंटवारा रहता है और वो खरपतवार उसमें ज्यादा हिस्सा ले लेते हैं। तो जब फसल और खरपतवार का जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके चलते हमारी जो मुख्य फसल है उसकी उपज में कमी आ जाती है।
0: जी हाँ।
1: तो इसके चलते हमें खरपतवारों को बिल्कुल खेत से हटा कर रखना चाहिए, मुक्त रखना चाहिए और समय समय पे हमें उसके नियंत्रण के लिए उपाय भी करने चाहिए। अभी जैसे कि अपन देखते हैं कि मक्का की खेती है, मक्का में हम कहते हैं कि मक्का को अगर शुरू के 30-40 दिन तक अगर खरपतवार से मुक्त रखा जाए तो हमारे जो मक्का की फसल है जो मुख्य फसल है वो अच्छी हो सकती है। क्योंकि मक्का में क्या है कि चौड़ी कतारें होती है, अब देखते हैं कि दो दो हाथ की कतारें या 60 सेंटीमीटर कतारें होती हैं। तो उस 60 सेंटीमीटर कतारों में खरपतवार के जो पौधे हैं वो तेजी से बढ़ते हैं जबकि हमारे मक्का के मुख्य फसल के पौधे वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो जितना भी हमारा आदान दिया हुआ है तो वो खरपतवार की फसलों में चला जाता है। इससे क्या होता है, अगर हम खरपतवारों को नहीं हटाएंगे तो जो मक्का की फसल हमारी दब जाती है और अगर शुरू में फसल दब गई और शुरू में मक्का के पौधे हमारे दब गए तो हमारी आधी उपज का नुकसान होने की संभावना होती है। तो इसके लिए सबसे हमें खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। अब जब मिश्रित फसल करते हैं तो मिश्रित फसल की जैसे अपन बात कर रहे हैं कि उसमें हम कई सारी फसलों का समावेश करते हैं अपने खेत में, तो हम जो बीज की जो जगह है जैसे अपन दो हाथ की कह रहे हैं मक्का से मक्का के बीच में दो हाथ की जगह, तो उनकी जगहों पर भी हम दूसरी फसल लगा लेते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसमें क्या होता है कि वो फसल क्योंकि खरपतवारों की फसल नहीं है तो अगर उसमें उसके अंदर थोड़ा सा जो हमारा आदान है वो जाते भी हैं तो हमें उससे भी फसल का हमारा उपज प्राप्त हो जाती है।
0: जी।
1: तो

0: खरपतवारों की जगह हम अगर उन मुख्य फसलों के साथ में जो अंतर फसल लगा देते हैं तो उसका भी हमें फायदा होता है। तो इस तरह से खरपतवारों की जगह पर हमें दूसरी फसल लगा लें तो हमें वो फायदा है। और खेत भी हम जैसे देखते हैं कि खेत हमारे बहुत ही लिमिटेड है, एक साइज उनके जितने भी अपन देखते हैं कि हमारा खेत के जितना आकार है वो एक सीमित है। अगर वो 2 बीघा है तो 2 बीघा है, बढ़ता नहीं है।
1: जी जी।
0: 3 बीघा है तो 3 बीघा ही है, बढ़ने वाला नहीं है। तो हमें हमारा जो आजीविका चलाने के लिए उसी खेत पर हमारे फसलें आधारित होती है। तो कई बार जो अपन देखते हैं कि बरसात ज्यादा हो रही है या बरसात कम हो रही है तो हमारी जो फसल है उसमें नुकसान भी हो जाता है कभी, क्योंकि हमारी सारी खेती बारिश के आधार पर हो जाती है। तो बारिश के आधार पर होने से क्या होता है कि अगर बारिश बहुत ज्यादा हुई तो फसल गलने की समस्या हो गई, बारिश कम हो गई तो फसल में जो पैदावार है वो कमी आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं मिश्रित फसल लें, तो मिश्रित फसल में क्या कई सारी फसलें होती है जिनके पौधों का पानी के रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें अगर कम ज्यादा बारिश होने के कारण भी अगर मुख्य फसलों में अगर नुकसान होता भी है तो हमारी जो सहयोगी फसल है उससे हमें उपज मिल जाती है। तो उसमें हमें खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाता है और हमारी जो अंतर फसल उसका भी लाभ मिल जाता है। इसके साथ में भी क्या होता है कि कई बार जड़े का भी होता है, अभी हम देखते हैं कि बारिश अगर लगातार है तो हमें खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता, हमारी निराई गुड़ाई का प्रॉपर नहीं हो पाता। तो निराई गुड़ाई प्रॉपर नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि जड़ों का विकास नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें खरपतवार का नियंत्रण और निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहना चाहिए। इस बार अपन ने देखा कि शुरू में तो बारिश खूब आ गई, लेकिन अभी अपन देख रहे हैं कि 5-7 दिन से बारिश में कमी आई है। यद्यपि जो

0: मिल रही है तो उससे हमारे मुख्य फसल के अंदर प्रोटीन बनने की मात्रा में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो हमारे पोषण है जो हम खाते हैं भोजन में तो वो प्रोटीन के माध्यम से बनते हैं और वो नाइट्रोजन का कन्वर्ट होके प्रोटीन बनता है।
1: जी जी।
0: तो उसके लिए धूप है, हवा है, इस तरह से पौधे के बढ़वार में आवश्यक हो जाती है, खाद की भी आवश्यकता होती है। अभी अपन देखते हैं मक्का का खेत है, जब हम फूल आने की अवस्था पे होता है तो उसमें हमें देखते हैं कि उसमें नाइट्रोजन की उर्वरक की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे का जो पूरा ध्यान है वो फूल बनाने पर चला जाता है। किसी फसल में जो फूल का अपन सामान्य कहते हैं कि फूल के आने के समय में उर्वरक की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम जैविक जब हम आदान देते हैं उस समय हम अगर अपना चाहे तो पत्तों पर छिड़क कर हम अपना पंचगव्य है या पंचामृत है या जितना भी हम जो देते हैं हमारा जैविक आदान है वो दें, ताकि उसमें हमें उस समय पौधों पर नाइट्रोजन फास्फोरस जो हमारे मुख्य है आदान उनकी कमी ना हो। खेत पे अपन देखा कि अपने तब देख FIM वगैरह जो अपना देसी खाद डाला हुआ है तो अगर हमने अच्छी तरह से किया है तो पौधों में उसकी बढ़वार होने के लिए और उसके जड़ों की जो बढ़वार होने के लिए वो एक लाभकारी माध्यम हो जाता है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से अपन देखते हैं कि खेतों के अंदर खरपतवार का काफी अच्छे से नियंत्रण किया जाता है।
1: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी है कि किस तरीके से खरपतवार का उन्हें नियंत्रण करना है। जैसा कि सर आपने बताया कि मक्का की खेती और जो भी ऐसे खेत है जहाँ पर बीच बीच में जो जगह खाली रह जाती है वहाँ पर वो मिश्रित खेती कर सकते हैं, जिससे खरपतवार उगने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाए। तो हमारे किसान भाई बहन हैं वो इन बातों को ध्यान में रखें। और इसी के साथ जैसा कि सर आपने बताया कि बारिश जो है वो कभी बहुत ज्यादा निरंतर आती रहती है, तो उस समय हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्हें खरपतवार नियंत्रण करने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि वो निराई गुड़ाई करने के लिए खेतों में नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं अगर मिश्रित खेती करते हैं और उन्हें जैसा लग रहा है कि खरपतवार हो भी रहे हैं तो उसकी वो अगर निराई गुड़ाई कर दें तो उनका जो उत्पादन है उसमें उन्हें कमी नहीं महसूस होगी। और जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं अगर मिश्रित खेती करते हैं तो अगर बारिश कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो भी उन्हें उसका जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में उत्पादन मिलना चाहिए वो उन्हें मिल पाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ में भी अपन देखते हैं कि अगर हमने खरपतवार हटा रखे हैं तो जो हमारा कीड़ों का नियंत्रण भी हो पाता है। कीड़े क्योंकि जब कीड़ों का क्योंकि हम खेत में जा नहीं पाते तो कुछ फसलें ऐसी होती है कि खरपतवारों के जिसपे कीड़े का प्रकोप ज्यादा होता है। कीड़े का प्रकोप उस पर ज्यादा होगा तो हमारी मुख्य फसल पे भी हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमें क्योंकि जैसे अपन कहते हैं ना अवरोध फसलें ऐसी होती है कि जिसमें हमारी मुख्य फसलों के बीच में कोई अवरोध होता है
1: जी जी।
0: तो उसको भी लगाना है। कुछ ऐसी फसलें होती है आकर्षण वाली फसल, जैसे अपन देखते हैं कि हम कपास के अंदर भिंडी की फसल लगाते हैं। तो भिंडी की फसल क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस पे कीड़े का प्रकोप भिंडी पे ज्यादा होता है
1: जी
0: और
1: जी।
0: हमारी जो मुख्य फसल है कपास उस पे वो प्रकोप कम पड़ता
1: है,
0: क्योंकि जो हमारे कीट वगैरह जितने भी उनकी संख्या जो है वो नियंत्रण में होनी चाहिए। अगर वो नियंत्रण में होगी या तो हम उसको अपन रसायन के माध्यम से उसको खत्म करें या हम ऐसी विधियां रखें जिससे हमारे खेतों पर वो कीड़े आए ना। तो उसको कहते हैं एस्केप मैकेनिज्म या बचाव का प्रक्रिया जो कहते हैं। तो बचाव की प्रक्रिया करने से क्या होता है कि जो हमें एनवायरनमेंट में जो हमारे वातावरण में जो कीट की जो संख्या है वो बनी रहती है लेकिन हमारी फसलों को वो नुकसान
1: नहीं पहुंचता है।
0: इससे हम कहते हैं कि अपने कहते हैं ना बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, इसका भी संरक्षण पर इन जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें बचाव वाली खेती को करने की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। कीट का नियंत्रण अगर हम सीधा सीधे किसी कीड़े को मार सकते हैं लेकिन मारने से हमें उसकी जीव की उस कीड़े की प्रजाति को कम कर जाते हैं
1: जी बिल्कुल।
0: लेकिन हमें कीड़े की प्रजाति से हमारे दुश्मनी नहीं है या नाराजगी नहीं है, हमारा तो हमारी फसलों में नुकसान ना हो
1: जी बिल्कुल।
0: तो इस तरह से हम अपनी खेती का प्रबंधन भी करते हैं
1: जी
0: उस प्रबंधन के माध्यम से कीट का नियंत्रण भी करते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि जब हम जैविक खेती कर रहे हैं तो हम ना जो नीम के जितने भी वो हैं
1: जी बिल्कुल
0: कीटनाशक उनका प्रयोग करते हैं, ताकि वो नीम के कीटनाशक प्रयोग करने से क्या है कि हमारी जो मुख्य फसलों पर उन कीट का प्रकोप कम हो जाए
1: जी बिल्कुल।
0: और हमारा जो उसका पौधे का जीवन चक्र वो पूरा हो जाता है। जीवन का पूरा चक्र होने से हमारे जो अपना उपज है वो प्रॉपर मिल पाती है
1: जी बिल्कुल।
0: तो उसमें क्या कीट भी बना रहता है और हमारी फसलों को भी नुकसान नहीं होता है। तो इसमें खरपतवार भी है, कीट नियंत्रण के लिए हमारे जैविक जो कीट उपचार के लिए तरीके भी हैं वो करने चाहिए। और जो बारिश भी आ रही है तो बारिश में भी अपन देखते हैं कि बारिश के अंदर भी खेत में से पानी निकालते रहे, क्योंकि अगर पानी खेत में बना रहेगा तो जो खेत में है जो जितने भी उसमें जो जमीन से मिट्टी से जितना उर्वरक है उसके वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पानी के माध्यम से सब गल जाते हैं। तो इसलिए खेतों में पानी की मात्रा भी बनी नहीं रहनी चाहिए, खेतों में पानी निकलना चाहिए। हाँ, धान के अंदर हम कहते हैं कि धान में

0: में वो खेत पानी से भरा हो, क्योंकि उसमें जड़ों का प्रक्रिया अलग समय होती है। वो जड़ें क्या है, जड़ें उसके मिट्टी जो होती है, जमी हुई मिट्टी, उसमें से वो ऑक्सीजन की प्राप्त करती है। तो इसलिए उसमें तो धान के लिए व्यवस्था अलग है, लेकिन धान के अलावा जितने भी हमारी फसलें हैं उसमें हम ये मानते हैं कि ज्यादातर खेत में पानी ना जमा रहे। अगर जैसे बरसात आए तो कोई ऐसे नदी नाले से या ऐसे नालियां बनाए ताकि वो खेत में से पानी का निकास होता रहे। ये भी है कि निकास के समय ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी बह के नहीं चली जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: इसलिए किसान भाई जो हमारा है कई सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अपने खेत का प्रबंधन करता है कि उसकी मिट्टी बची रहे, पौधा भी बचा रहे, खेत की उर्वरकता शक्ति बनी रहे और जो हमारी उपज है वो भी प्राप्त हो, और जो हमारा जो सीमित खेत है उसमें हम अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर पाए, ये प्रबंधन करने हमारी आज की आवश्यकता है।
1: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमारे किसान भाई बहनों को खेती से जुड़ी ढेर सारी बहुत अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
1: जिम के किसान भाई बहनों अवड़े अपने वैस में प्रमोद जी सर जुड़े तक कहता ने एना अपना ने घनी असल तरीका तक बताड़ दीदो है कि हरते अपना ने अवड़े ना टाइम में अपने खेतर नु ध्यान रखो सुए। तो किसान भाई बहनों आज नानी मोटी बातें हती जे अपना ने ध्यान में रखवी सुए। तो आशा कर रहा हूँ कि आप भी हंगरी बातें ध्यान में रखोगा, क्योंकि अपने देख हाँ किसान भाई कि अपनी जरा सी लापरवाही जो है ये अपने खेतर ने उत्पादन में अपना ने कमी करी दे है। तो अपना ने अनी सब बातों नु ध्यान रखव होगा ने अपनो जो उत्पादन है ये अपना ने अपना खेतर तक की असल तरीका तक लेवो होगा। तो किसान भाई बहनों आज कार्यक्रम में हमारी अब तक की बातें तो घना कनी थी गई है ने अभी टाइम भी थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो। तो अपने सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत मोरे पड़ा सूटा।

किसान भाई बहनों अणस गे थाते अमे कार्यक्रम खेती बाड़ी तक पड़स उठा। आशा कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आप तक जे भी बातें रही है ये आपने गमी होंगे। तो किसान भाई बहनों आपने अमरु आज ना कार्यक्रम केव लगे एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली सको अमरे अणा पता माते। हमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिनकोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन कर सको अमरे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बोनू फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक नवे शने हाथी तारुदी राम राम राम राम।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करी है। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुए। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: भाई बोनो, घर की निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में, जहां श्रोता साथियों हर कहानी और हर संवाद के पीछे छुपी होती है हमारे जीवन को बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश। अगस्त का महीना आते ही हमारे मन में तिरंगे के रंग, देशभक्ति के गीत, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की याद ताजा हो जाती है। स्कूलों में बच्चे तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं और भाषण देते हैं, साथ ही श्रोता साथियों स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वाकर रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं आजादी का सही अर्थ बच्चों को कैसे समझाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता दिवस है वो हमारी यादों को ताज़ा कर देता है। स्कूलों में बच्चे तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं और भाषण देते हैं और स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, हमने कभी अपने बच्चों से यह पूछा है आज़ादी आखिर होती क्या है? क्या आज़ादी का मतलब ही कि हमें कोई कुछ न कहे? क्या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम दूसरों को परेशान कर सकते हैं? क्या हमें अधिकार तो चाहिए लेकिन हमारी जिम्मेदारियां नहीं? नहीं साथियों, आज़ादी का सही अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं, आज़ादी का अर्थ ही अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर, सही और गलत में फर्क समझने की क्षमता और श्रोता साथियों, अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना। श्रोता साथियों, हमारे देश को आज़ादी बहुत संघर्ष और बलिदान के साथ मिली है, इसलिए बच्चों को आज़ादी की कहानी केवल तारीख और घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे त्याग, जिम्मेदारी, अनुशासन, एकता और देश प्रेम के रूप में समझाना भी जरूरी है। आज का हमारा नाटक इसी सवाल से शुरू होता है श्रोता साथियों, अगर हम आज़ाद हैं तो क्या हमें जो मन आए वह करने की पूरी छूट है? तो श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं एक माँ और बेटी के बीच होने वाली एक ऐसी बातचीत जो शायद हम सबको आज़ादी का असली अर्थ समझने में मदद करे।
1: मम्मी, एक बात पूछूं?
2: हाँ बेटा, पूछो।
1: स्कूल में कल मैडम कह रही थी कि हमारा देश आज़ाद है, लेकिन अगर हम आज़ाद हैं मम्मी, तो इतने सारे नियम क्यों मानने पड़ते हैं हमें?
2: अरे बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि नियम और आज़ादी एक दूसरे के विरोधी हैं?
1: क्योंकि मम्मी, आज़ादी का मतलब तो अपनी मर्जी से जीना होता है ना। अगर मैं आज़ाद हूँ तो मैं जब चाहूँ मोबाइल चला सकती हूँ, जब चाहूँ बाहर जाऊँ, अपनी मर्जी के कपड़े पहनूँ, जो चाहूँ वो बोलूँ, फिर ये इतने सारे नियम क्यों?
2: बेटा, अपनी पसंद रखना गलत नहीं है, अपनी बात कहना भी गलत नहीं है, लेकिन एक बात समझो कि तुम्हारी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से किसी दूसरे के अधिकार और सुरक्षा को नुकसान न पहुँचे।
1: मतलब मम्मी?
2: बेटा, मान लो कि तुम्हें बहुत तेज आवाज में गाना सुनना पसंद है।
1: हाँ हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है।
2: अगर बेटा तुम अपने कमरे में उचित आवाज में सुनो तो ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन अगर तुम आधी रात को इतनी तेज आवाज में संगीत चलाओ कि पड़ोस के छोटे बच्चे और बुजुर्ग सो नहीं पाए, तो क्या वह आज़ादी कहलाएगी?
1: शायद नहीं मम्मी, क्योंकि मेरी वजह से तो दूसरे परेशान होंगे ना।
2: बिल्कुल, आज़ादी का मतलब केवल मैं क्या करना चाहती हूँ नहीं है बेटा, बल्कि आज़ादी के साथ ये समझना भी जरूरी है कि मेरे काम से किसी दूसरे पर क्या असर पड़ेगा।
1: तो क्या आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है क्या?
2: हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बेटा, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी इसलिए नहीं चाही थी कि आने वाली पीढ़ियां मनमानी करें। उन्होंने ऐसा भारत चाहा था जहां लोग सम्मान, अधिकार के साथ जीवन जी सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने देश के विकास में योगदान दे सके।
1: लेकिन मम्मी, हमें आज़ादी मिली कैसे?
2: पिटावनी, ये एक दिन में नहीं मिली है, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था। हजारों लोगों ने कठिनाइयां झेली, किसी ने जेल की यातनाएं सही तो किसी ने अपना घर छोड़ा और किसी ने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। उन्होंने अपने लिए नहीं बेटा, बल्कि भविष्य के लिए संघर्ष किया था।
1: ओह, मतलब आज मैं स्कूल में पढ़ सकती हूँ, अपनी पसंद का सपना देख सकती हूँ और अपनी बात कह सकती हूँ, तो इसके पीछे भी आज़ादी का योगदान है मम्मी?
2: बिल्कुल, और इसलिए आज़ादी की कीमत समझना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।
1: तो अगर कोई बच्चा कहे कि मैं आज़ाद हूँ इसलिए स्कूल नहीं जाऊँगा, तो क्या वह आज़ादी है मम्मी?
2: नहीं बेटा, शिक्षा से दूर होना आज़ादी नहीं है। शिक्षा तुम्हें अपने फैसले समझदारी से लेने की क्षमता देती है।
1: अच्छा, और अगर कोई कहे कि मैं आज़ाद हूँ इसलिए किसी का मजाक उड़ाऊंगा, तो क्या ये सही है?
2: वह भी आजादी नहीं है। अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है बेटा अवनी।
1: अच्छा मम्मी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पसंद है और मैं वही करूँगी, चाहे घर का कोई काम मैं ना करूँ, तो क्या ये मेरी आजादी है?
2: फिर तुम्हें आजादी के साथ एक और शब्द सीखना पड़ेगा बेटा।
1: वो क्या?
2: कर्तव्य।
1: कर्तव्य, ये क्या होता है?
2: हाँ बेटा, घर में अपनी जिम्मेदारी निभाना, स्कूल में ईमानदारी से पढ़ना, सार्वजनिक जगहों को साफ करना, पानी बिजली की बचत करना, पेड़ पौधे की देखभाल करना और दूसरों का सम्मान करना, ये सब जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी होती है।
1: अब मुझे सब समझ आ रहा है। आजादी का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी करूं, बल्कि आजादी का मतलब तो ये है कि मैं अपनी पसंद, अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करूं, है ना मम्मी?
2: बिल्कुल सही, और बच्चों को यही बात समझाना सबसे जरूरी है।
1: मम्मी, अगर मुझे आजादी का सही अर्थ अपने दोस्तों को समझाना हो तो मैं क्या कहूंगी?
2: बेटा, उन्हें कोई लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है, अपने व्यवहार से समझाओ।
1: व्यवहार से? वो कैसे?
2: बेटा, अगर स्कूल में तुम्हारी सहेली की राय तुमसे अलग है तो उसकी बात सुनो। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी मदद करो। बेटा, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो शांत पूर्वक अपनी बात रखो, और जब तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ।
1: अच्छा, मतलब आजादी की शुरुआत हमारे रोज के छोटे छोटे कामों से होती है ना?
2: हाँ, देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने की शुरुआत घर और स्कूल से ही होती है बेटा।
1: अब मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ झंडा फहराना और मिठाइयाँ खाना काफी नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं, उस दिन हमें यह भी सोचना चाहिए बेटा कि हम अपने देश की आजादी का सम्मान कैसे कर रहे हैं।
1: हाँ, तो इस बार स्कूल में एक बात मैं जरूर कहूंगी, हमें आजादी मिली है अपनी पहचान बनाने की, लेकिन दूसरों की पहचान मिटाने की नहीं। हमें बोलने की आजादी मिली है, लेकिन किसी को अपमानित करने की नहीं। हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है, लेकिन दूसरों को पीछे धकेलने का नहीं।
2: शाबाश बेटा, अगर हर बच्चा आजादी का अर्थ इसी तरह समझने लगेगा तो हमारा देश फिर से आजाद ही नहीं बल्कि और भी मजबूत बनेगा।
1: हाँ मम्मी, अब मैं एक वादा करूँ?
2: हाँ बेटा,
1: मैं अपने अधिकारों को समझूंगी लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलूंगी। मैं अपनी बात कहूंगी लेकिन दूसरों की बात भी सुनूंगी मम्मी, और साथ ही मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगी लेकिन किसी और के सपनों का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, और सबसे बड़ी बात, मैं अपने देश की आजादी की कीमत समझूंगी।
2: यही तो सच्ची आजादी की समझ है बेटा।
0: तो श्रोता साथियों, आपने सुना कि आजादी केवल अपनी इच्छा पूरी करने का नाम नहीं, आजादी अधिकार भी देती है और जिम्मेदारी भी सिखाती है। बच्चों को आजादी का अर्थ समझाते समय हमें उन्हें केवल स्वतंत्रता संग्राम की तारीख याद नहीं करवानी चाहिए, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि आज हमें मिली स्वतंत्रता को अपने अच्छे व्यवहार और जिम्मेदारी से कैसे मजबूत करना है। उन्हें बताएं श्रोता साथियों कि अपनी बात कहना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी जरूरी है। अपने सपनों को देखना जरूरी है, लेकिन दूसरों के सपनों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। अपने अधिकारों को जानना भी जरूरी है, लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, आजादी हमें मनमानी करने की छूट नहीं देती, बल्कि सही निर्णय लेने की ताकत देती है। आइए श्रोता साथियों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने बच्चों के साथ केवल तिरंगा न फहराएं, बल्कि उनके मन में जिम्मेदारी, सम्मान, समानता और देश प्रेम की भावनाओं को भी जगाएं। उन्हें यह समझाएं कि देश की आजादी को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका ईमानदार बनना, मेहनत करना, प्रकृति की रक्षा करना, दूसरों का सम्मान करना और साथ ही श्रोता साथियों, अपने समाज के लिए जिम्मेदारी निभाना है। और अपने बच्चों से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर आजादी हमें अपने सपने पूरे करने का अधिकार देती है तो अपने देश को समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? शायद यही सवाल है श्रोता साथियों, उन्हें आजादी का सही अर्थ समझने की दिशा में सबसे बड़ा कदम देगा। याद रखिए श्रोता साथियों, सच्ची आजादी वही है जहां अधिकारों के साथ जिम्मेदारी हो। अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल हो और अपने सपनों के साथ देश के भविष्य की चिंता हो। इसी संदेश के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी श्रोता साथियों, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को केवल आजादी की कहानी मत सुनाइए, उन्हें आजादी को जिम्मेदारी के साथ जीना भी सिखाइए। इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करूंगी कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।
1: तक तक तक तक तक तक तक तक

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है।
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि युवा साथियों, जब भी हम कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से जुड़ते हैं तो बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे कि कामयाबी से सीखना आसान है लेकिन नाकामी से सीखना ज्यादा जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी कि हर व्यक्ति सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके प्रयासों की सराहना हो, उसके सपने पूरे हो और वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए।
1: जी हाँ,
0: लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या केवल सफलता हमें आगे बढ़ाती है? क्या असफलता का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है? साथियों, सच तो ये है कि सफलता हमें खुशी देती है, लेकिन असफलता हमें अनुभव के साथ साथ धैर्य और सही दिशा भी देती है।
1: जी हाँ कशिश, तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्यों असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत होती है, कैसे नाकामी हमें मजबूत बनाती है और क्यों हर युवा को अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जरूर जानेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं यह गीत।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज़ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं, कामयाबी से सीखना आसान है लेकिन नाकामी से सीखना ज्यादा जरूरी है। तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन के दो पहलू है। जीवन कभी भी एक सीधी सड़क की तरह नहीं होता, इसमें कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिलती है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, जैसा कि हमने पहले कहा था।
1: बिल्कुल,
0: जब हमें सफलता मिलती है तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमें सम्मान देते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सफलता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमने सब कुछ सीख लिया है। वहीं दूसरी ओर असफलता हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। वह हमसे सवाल पूछती है कि कहाँ गलती हुई, क्या तैयारी अधूरी थी, क्या तरीका सही नहीं था, क्या हमें और मेहनत की जरूरत है। यही सवाल हमें बेहतर इंसान बनाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जाता है साथियों कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है और अनुभव अक्सर गलतियों से ही मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम असफल होते हैं जागृति जी, तब हमें अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं। हम अपनी योजनाओं की समीक्षा करते हैं और अगली बार बेहतर तैयारी करने की कोशिश करते हैं।
0: जी हाँ,
1: यदि श्रोता साथियों जीवन में कभी हार ही न मिले तो शायद हम कभी सुधार करना भी नहीं सीख पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए असफलता हमें सिखाती है साथियों कि धैर्य कैसे रखा जाता है, मेहनत का महत्व समझना क्या है, गलतियों को स्वीकार करना क्या होता है और दोबारा शुरुआत करने का साहस हम कैसे रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही जो परिस्थितियाँ होती हैं वो खुद के अनुसार हम कैसे बदल सकते हैं, ये भी हमें असफलता ही सिखाती है जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो हम कह सकते हैं कि आज का युवा प्रतिस्पर्धा के दौर में जी रहा है। अच्छे अंक लाने का दबाव, नौकरी पाने की चिंता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, परिवार की अपेक्षा और सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद की तुलना करना, ये सब मानसिक दबाव बढ़ा देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक छोटी सी असफलता भी युवाओं को ये महसूस करा देती है कि उनका भविष्य समाप्त हो गया। लेकिन सच्चाई ये नहीं है श्रोता साथियों, एक परीक्षा में असफल होना, किसी नौकरी में चयन न होना या किसी प्रतियोगिता में हार जाना जीवन की अंतिम मंजिल नहीं है, केवल एक पड़ाव है जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथियों इतिहास गवाह है कि असफल लोग ही आगे चलकर महान बने हैं।
0: बिल्कुल,
1: दुनिया के अधिकांश सफल लोग अपने जीवन में कई बार असफलता के दौर से गुजरे थे जागृति जी। उन्होंने हार को स्वीकार किया लेकिन खुद को हारने नहीं दिया।
0: बिल्कुल,
1: यदि वे पहली असफलता के बाद बैठ जाते श्रोता साथियों तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद ही नहीं रखती। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था उनकी असफलताओं से मिलने वाली सीख।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि धैर्य, जैसे कि श्रोता साथियों हर अच्छी चीज समय लेती है। असफलता हमें इंतजार करना सिखाती है। आत्मविश्लेषण की अगर बात करें तो हम अपनी कमियों को पहचानते हैं। और अनुशासन से अगर सीखें तो दोस्तों हमें ये समझ आता है कि केवल प्रतिभा नहीं, नियमित मेहनत भी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल,
1: बार बार प्रयास करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है और असफलता हमें जमीन से जुड़े रहना भी सिखाती है जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, सबसे पहले असफलता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरों को दोष देने के बजाय हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल,
0: गलतियों की सूची बनानी होगी, अनुभवी लोगों से सलाह लेनी होगी, नई योजना बनानी होगी, छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना होगा।
1: जी जी,
0: यानी कि कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि हम हर असफलता से कैसे सीखें उसके लिए हमने आपको बताया। आज सोशल मीडिया पर केवल लोगों की उपलब्धियां दिखाई देती हैं, कोई अपनी मेहनत, संघर्ष, साहस और असफलता नहीं दिखाता।
1: जी जी,
0: इसलिए दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमजोर समझना भी सही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा बहुत अलग होती है, अपने सफर की तुलना किसी और से मत कीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से हम बात कर ही रहे हैं कि कामयाबी से सीखना आसान है लेकिन वहीं नाकामी से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बात कर रहे हैं कि हमें नाकामी से सीखना जरूरी होता है, अगर यही बात करें सोशल मीडिया और सफलता के भ्रम की, तो जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि आज सोशल मीडिया पर लोग केवल उपलब्धियों को ही देखते हैं, ऐसे में श्रोता साथियों हमें परिवार और समाज की भूमिका को भी समझना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि जब कोई युवा असफल होता है तब उसे सबसे अधिक जरूरत होती है विश्वास की, सहयोग की और प्रेरणा की जागृति से। ऐसे समय में परिवार और समाज को आलोचना नहीं बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे कि एक सकारात्मक शब्द कई बार किसी युवा के जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, हम हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सफलता केवल पैसा, नौकरी या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता तो वो है जहाँ हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, ईमानदारी से मेहनत करना सीख जाए, लगातार सीखते रहना भी सच्ची सफलता है, और हार मानने के बजाय फिर से प्रयास करना। श्रोताओं याद रखिए, अगर हम आज असफल हुए तो इसका मतलब केवल इतना है कि अभी मंजिल तक पहुंचने का सफर बाकी है।
0: जी हाँ।
1: हर असफलता हमें पहले से अधिक समझदार बनाती है। हार तभी स्थायी बनती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल।
1: जो लोग गिरकर उठना सीख जाते हैं वही जीवन में सबसे ऊंची उड़ान भी भरते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। युवा साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन की राह में सफलता और असफलता दोनों आएंगी।
1: बिल्कुल।
0: सफलता आपको खुशी देगी लेकिन असफलता आपको पहचान देगी साथियों। सफलता तालियां दिलाती है जबकि असफलता चरित्र बनाती है जागृति जी। इसलिए कभी भी अपनी किसी हार को अपनी पहचान मत बनने दीजिए दोस्तों, उसे अपनी असली जीत की तैयारी बनाइए। जब भी जीवन में कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई परीक्षा उम्मीद के अनुसार न हो, कोई अवसर हाथ से निकल जाए या मेहनत का परिणाम तुरंत न मिले, तब निराश होने के बजाय ये सोचिए साथियों कि ये समय आपको कुछ नया सिखाने आया है।
1: बिल्कुल।
0: हर ठोकर आपको मजबूत बना रही है, हर चुनौती आपको परिपक्व बना रही है और हर असफलता आप उस सफलता के योग्य बना रही है जो भविष्य में आपका इंतजार कर रही है दोस्तों।
1: बिल्कुल बिल्कुल कशिश, इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते,

0: हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते, इसलिए अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, मेहनत को अपना साथी बनाइए, सीखने की आदत बनाए रखिए और हर असफलता को एक नई शुरुआत का अवसर समझिए।
1: बिल्कुल।
0: और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आज की हमारी जो बातचीत है वो यही है कि कामयाबी हमारी खुशी का कारण हो सकती है, लेकिन नाकामी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का अवसर होती है।
1: जी हाँ,
0: जीवन में हर बार हमारी मेहनत का परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आएगा। कभी परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं मिलेंगे, कभी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिलेगी, कभी किसी अवसर के लिए हमारा चयन नहीं होगा और कभी कोई सपना पूरा होने में हमारी सोच से अधिक समय लगेगा। ऐसे समय में खुद पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन खुद को कमजोर मान लेना सही नहीं है, क्योंकि एक असफल परिणाम ये तय नहीं करता कि हम कौन है, वो केवल ये बताता है कि हमारे सफर में अभी कुछ सीखना बाकी है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जब कभी नाकामी सामने आए श्रोताओं, तो उसे भागिए मत, कुछ समय रुकिए, अपने प्रयास को देखिए और खुद से पूछिए कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकती हूँ।
1: जी हाँ जागृति जी, साथियों जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर सफलता के पीछे कई असफलताओं की कहानी छिपी हुई होती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई सपना अधूरा रह गया है युवाओं, या कोई परीक्षा उम्मीद के अनुसार नहीं हुई है, या कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया है, तो निराश मत होइए।
0: बिल्कुल,
1: याद रखिए असफलता आपकी मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
0: जी हाँ,
1: हर ठोकर आपको पहले से अधिक मजबूत बनाती है, हर चुनौती आपको नया अनुभव देती है साथियों, और हर नाकामी आपको कुछ नया सिखाने आती है।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज के दौर में हमें केवल सफलता पाने की नहीं बल्कि सफलता और असफलता दोनों को संभालने की कला सीखने की जरूरत है। सफलता मिले तो विनम्र रहिए श्रोताओं, और असफलता मिले तो धीरे रखिए।
1: बिल्कुल।
0: प्रशंसा मिले तो सीखना मत छोड़िए, और आलोचना मिले तो उसे उपयोगी बात निकालने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में एक ऐसी सोच विकसित कीजिए जिसमें हार के बाद पहला सवाल ये न हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये हो कि अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं।
1: जी हाँ,
0: यही सोच हमें भीड़ से अलग बनाएगी। श्रोता साथियों याद रखिए, गिरना हमारी कमजोरी नहीं है, गिरने के बाद अपने अनुभवों को समझकर आगे बढ़ना हमारी ताकत है।
1: बिल्कुल,
0: रास्ते में आने वाली हर ठोकर को अपने सफर की कहानी का एक अध्याय बनाइए, पूरी कहानी का अंत नहीं। कभी किसी दूसरे की सफलता देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए, हर व्यक्ति का समय अलग होता है, परिस्थिति अलग होती है कशिश, और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी अलग होता है।
1: जी हाँ,
0: हमारी गति चाहे धीमी हो सकती है श्रोताओं, लेकिन अगर दिशा सही है और प्रयास लगातार है तो हमारी यात्रा मूल्यवान है। इसीलिए आज से आप अपनी असफलताओं को छिपाने के बजाय उनसे सीखने की आदत डालिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उनसे सबक लीजिए और अगली कोशिश में एक कदम और बेहतर बनने का प्रयास कीजिए। और जब कभी मन कहे कि अब नहीं हो पाएगा, तब अपने आप से कहिए शायद अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और फिर प्रयास करूँगा, क्योंकि असली जीत केवल मंजिल तक पहुँचने में नहीं बल्कि उस सफर में खुद को लगातार बेहतर बनाने में है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है, और जैसा कि समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों न कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे दोस्तों को हम सुनवाएं?
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हम बात करने वाले हैं, जैसा कि कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि, स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम आजादी के इस अमूल्य उपहार की रक्षा करें और देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, हमारे कर्तव्य क्या है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, आजादी हमें विरासत में मिली कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि लाखों बलिदानों, संघर्षों और त्याग की अमूल्य देन है।

0: इस आजादी को पाने के लिए किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा, किसी ने सुख सुविधाओं को, किसी ने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है श्रोताओं, बल्कि आत्मचिंतन और अपने कर्तव्य को याद करने का अवसर भी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, 15 अगस्त की सुबह जब तिरंगा खुले आसमान में लहराता है और राष्ट्रगान की धुन वातावरण में गूंजती है, तब हर भारतीय के मन में गर्व की भावना जागती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने का अवसर देती है कि क्या केवल स्वतंत्र होना ही पर्याप्त है या स्वतंत्रता को मजबूत बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ श्रोता साथियों, आजादी के वर्षों बाद भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने अपनी मजबूत पहचान भी बनाई है। लेकिन जागृति जी, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं होती है। देश तब मजबूत बनता है श्रोता साथियों, जब उसके नागरिक जागरूक, जिम्मेदार, ईमानदार और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है श्रोता साथियों, अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी समझना।
1: जी जी,
0: हम देखते हैं अंजलि कि हमें अपने अधिकारों पर गर्व है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। हमें शिक्षा का अधिकार मिला है तो शिक्षा के महत्व को भी समझना होगा श्रोताओं। हमें स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है तो स्वच्छता भी हमें ही बनाए रखनी होगी, ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और हमें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है तो दूसरों के विचारों का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया और आगे क्या कर सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, अब बात आती है देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की। तो श्रोता साथियों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियाँ, परंपराएं, खान पान और जीवन शैलियाँ हैं।
0: जी हाँ,
1: यही विविधता जागृति जी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस विविधता का सम्मान करें और एकता को मजबूत बनाएं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या किसी अन्य आधार पर भेदभाव करने के बजाय हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जब देश के नागरिक एकजुट रहते हैं तो कोई भी चुनौती देश को कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए एक भारत, श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वह केवल नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में उतारना भी इसे जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो संविधान और कानून का सम्मान करे। नियमों का पालन केवल डर के कारण नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी की भावना से होना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हम छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं, तब हम देश की व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ बात आती है स्वच्छता की। तो श्रोता साथियों, स्वच्छता किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सड़क पर कचरा न फेंकना, कचरे को उचित स्थान पर डालना, प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग को कम करना और अपने आसपास साफ सफाई रखना, ऐसे छोटे कदम हैं जिसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम यह संकल्प ले सकते हैं कि अपने घर से लेकर अपने गांव, अपने मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों तक स्वच्छता का हम ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारे कर्तव्य को याद करें और उन कर्तव्यों का पालन करें।
1: बिल्कुल,
0: ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि किस तरीके से हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमें याद करने हैं, जिसमें हमने जाना देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, संविधान और कानून का सम्मान करना, साथ ही स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ एक और जिम्मेदारी जुड़ती है, जल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। जी हाँ श्रोता साथियों, पानी जीवन का आधार है। आज जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न भी है। पानी की हर बूंद को बचाना हमारा कर्तव्य है। अनावश्यक रूप से पानी बहने से रोकना, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: इसी कारण पेड़ पौधों, जंगलों, मिट्टी और जीव जंतुओं की रक्षा करना भी जरूरी है। प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं, यही हमारे श्रोता साथियों को बताते हैं कि शिक्षा को भी हमें अपना हथियार बनाना होगा।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
0: जी जी,
1: हम केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। बच्चों को विद्यालय भेजना होगा, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करनी होगी और जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित भी करना होगा।
0: जी,
1: ये हमारी और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक शिक्षित समाज ही जागरूक समाज बन सकता है और जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, राष्ट्र निर्माण केवल बड़े बड़े कार्यों से नहीं होते हैं। ईमानदारी से किया गया हर छोटा काम देश के निर्माण में योगदान देता है।
1: बिल्कुल,
0: अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, गलत रास्तों से बचना, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग न करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सच्ची देशभक्ति है।
1: जी हाँ।
0: यदि हर व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करने का संकल्प ले तो देश की अनेक समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल श्रोता साथियों चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है जिम्मेदारी, सहभागिता, संवाद और दूसरों के विचारों का सम्मान करना।
1: बिल्कुल,
0: एक जागरूक नागरिक को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए। हमें अफवाहों और गलत सूचनाओं पर तुरंत विश्वास करने के बजाय तथ्य जांचने की आदत विकसित करनी चाहिए। लोकतंत्र में हमारी आवाज तभी मजबूत होगी जागृति जी, जब हम जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, आज मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा, संचार और जानकारी को बहुत आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को बिना जांचे आगे बढ़ाना बहुत गलत सूचना को फैलाने का कारण बन सकती है। इसलिए श्रोताओं, डिजिटल माध्यमों का उपयोग समझदारी से करना होगा। हमें तकनीक को ज्ञान, शिक्षा और सकारात्मक संवाद का माध्यम बनाना होगा। डिजिटल दुनिया में भी वही नियम लागू होते हैं जो वास्तविक जीवन में सम्मान, जिम्मेदारी और सावधानी बरतते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, अब यही बात आती है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की। श्रोता साथियों, सड़कें, विद्यालय, अस्पताल, पार्क, बसें, सरकारी भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरे समाज की संपत्ति है। दीवारों को गंदा करना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना या सुविधाओं का गलत उपयोग करना वास्तव में अपने ही संसाधनों को नुकसान पहुंचाना है।
1: बिल्कुल,
0: हमें ये समझना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। देश की प्रगति में नागरिकों की आर्थिक भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हमें मेहनत, कौशल और नवाचार को महत्व देना चाहिए। स्थानीय उत्पादों, स्थानीय कारीगरों और स्थानीय ज्ञान को प्रोत्साहन देकर हम अपने समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी, कलाकार, इसी के साथ जागृति जी विद्यार्थी और प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करके देश के विकास में योगदान दे सकता है। भारत की शक्ति केवल बड़े शहरों में नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि गांवों और छोटे कस्बों में बसती है।
1: बिल्कुल अंजलि, एक मजबूत राष्ट्र वही है जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्चों की शिक्षा में सहयोग देना और समाज में कमजोर लोगों के प्रति संवेदनशील रहना हमारे मानवीय कर्तव्य का हिस्सा है। हमें ऐसा समाज बनाना है जहां किसी व्यक्ति को अकेला महसूस न हो और जहां सहयोग की भावना मजबूत हो। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या हमें उन वीरों को याद करने का अवसर देती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उनका सम्मान केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: उनके जीवन से हमें साहस, त्याग, अनुशासन, देश प्रेम और संघर्ष की प्रेरणा लेनी होगी। आज हमारी जिम्मेदारी है कि जिस स्वतंत्र भारत का सपना उन्होंने देखा था उसे मजबूत बनाने में हम अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि देश का भविष्य उनके युवाओं के हाथों में है। युवा ऊर्जा, विचार, तकनीक और नए सपनों की शक्ति रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: युवाओं को केवल रोजगार पाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले नागरिक के रूप में भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए। नई चीजें सीखना, कौशल विकसित करना, नवाचार करना, समाज की समस्याओं को समझना और उनके समाधान में योगदान देना युवा शक्ति की पहचान बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम सोचते हैं कि देश के लिए कुछ बड़ा करना ही देशभक्ति है, लेकिन श्रोता साथियों, वास्तविकता यह है कि राष्ट्र निर्माण छोटे छोटे कदमों से होता है।
1: बिल्कुल,
0: एक व्यक्ति पानी बचाता है तो दूसरा पेड़ लगाता है, कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो कोई शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है, कोई किसान मिट्टी और पानी की रक्षा करता है तो जागृति जी कोई नागरिक सड़क पर नियमों का पालन करता है। ये सभी देश निर्माण के कार्य हैं। श्रोता साथियों, यदि करोड़ों नागरिक अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं तो उनका सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या हमें अतीत के बलिदानों, वर्तमान की जिम्मेदारियों और भविष्य के सपनों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया, अब इस स्वतंत्रता को सुरक्षित, मजबूत और सार्थक बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, तिरंगा तभी गर्व से लहराएगा जब उसके नीचे रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझेगा। देशभक्ति केवल नारों में नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। ये केवल 15 अगस्त का उत्सव नहीं, बल्कि वर्ष के हर दिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम स्वयं से एक सवाल पूछे कि मैं अपने देश के लिए आज क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि देश बदलने की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे होती है। आइए स्वतंत्रता के अमृत को जिम्मेदारी के संकल्प से सींचे और ऐसा भारत बनाने में अपना योगदान दे जहाँ विकास के साथ संस्कार हो, अधिकारों के साथ कर्तव्य हो, प्रगति के साथ प्रकृति की रक्षा हो और विविधता के साथ एकता हो।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, यही स्वतंत्रता का सम्मान है, यही सच्ची देशभक्ति है और यही हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
1: बिल्कुल,
0: आजादी का उत्सव मनाएं, कर्तव्य का दीप जलाएं, अपने छोटे छोटे प्रयासों से भारत को और मजबूत बनाएं।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट।

0: कोपड़ा वाघधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: श्रोता साथियों, एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। इसके जरिए भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaghdara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेशर को।
1: नमस्कार।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: साथियों, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपनी सेहत का रखें ध्यान। आंखें हैं अनमोल हमारी, इनसे है रोशन सारा जहां।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं प्यारी सी पंक्तियों के साथ में आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार कीजिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग्र रेडियो 90.8 FM पर। लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी बिल्कुल
0: साथियों, हम अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं और बीमार होने पर इलाज भी करवाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी अपनी आँखों को उतनी ही देखभाल करते हुए देखा है अपने आप को? क्योंकि हम देखते हैं कि आंखें हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है।
1: जी हाँ,
0: इन्हीं की मदद से हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं, खेतों में काम करते हैं, रास्ते पहचानते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं और अपने परिवार के चेहरों की मुस्कान महसूस करते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन मनीषा, आज मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और लगातार स्क्रीन देखने की आदत के कारण आंखों पर दबाव बढ़ रहा है। धूल, मिट्टी, धुआं, तेज धूप, पर्याप्त नींद न लेना, आंखों में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना भी आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज का हमारा कार्यक्रम का सवाल ये है कि आखिर अपनी आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आंखों की देखभाल कैसे करें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इन्हीं के माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रंगों को पहचानते हैं और अपने प्रिय लोगों को पहचान पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, प्रकृति ने हमें आंखों के रूप में बहुत अनमोल उपहार दिया है, इसलिए आंखों की सही देखभाल करना हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। अंजलि जी, आज के समय में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं।
1: बिल्कुल
0: पढ़ाई, काम, मनोरंजन और जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रोता साथियों, हम लंबे समय तक स्क्रीन को देखते रहते हैं। इसके कारण आंखों में थकान, जलन, सूखापन, पानी आना, सर दर्द जैसी परेशानियां वो हमें महसूस होती है। इसके अलावा साथियों, धूल, धुआं, प्रदूषण, पर्याप्त नींद न लेना और असंतुलित भोजन है वो भी हमारे आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आंखें हमारे शरीर की संवेदनशील संरचनाओं में से एक है।
0: जी हाँ,
1: आंखों की मदद से हमें वस्तुओं का आकार, रंग, दूरी और आसपास की गतिविधियां दिखाई देती हैं। इसलिए आंखों में होने वाली किसी भी परेशानी को सामान्य समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कई बार आंखों में हल्की जलन, पानी आना, थकान जैसी समस्या कुछ समय में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि समस्या बार बार हो रही है या दृष्टि में बदलाव महसूस हो रहा है तो आंखों की जांच कराना जरूरी है। आंखों की देखभाल का मतलब केवल बीमारी से बचाव नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों में भी आंखों को अनुकूल बनाना है। जैसे कि सबसे पहली बात आती है, मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल समझदारी से करें। आज मोबाइल हमारी जरूरत बन गया है। पढ़ाई, काम, जानकारी और मनोरंजन, हर चीज में मोबाइल का इस्तेमाल होता है, लेकिन लंबे समय तक बिना आराम के स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सूखापन, जलन, सिर दर्द जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए लगातार लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें। बीच बीच में आंखों को स्क्रीन से आराम दें। मोबाइल को आंखों के बहुत पास रखकर न देखें। अंधेरे कमरे में तेज रोशनी वाली स्क्रीन देखने से बचें। बच्चों को अनावश्यक और लंबे समय तक मोबाइल देने से हमें बचना है। साथ ही पढ़ाई और काम के दौरान उचित रोशनी रखें। याद रखिए कि मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन इसका गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आंखों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें पर्याप्त नींद की, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आंखों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: देर रात तक मोबाइल चलाना या लगातार स्क्रीन देखते रहना नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है तो आंखों में थकान, भारीपन और जलन महसूस हो सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, अपनी उम्र और जरूरत के अनुसार पर्याप्त नींद लेनी चाहिए हमें, और सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग हमें कम करने का अभ्यास करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात आती है कि हमारे ग्रामीण और वागड़ क्षेत्र में खेतों, जंगलों और खुले स्थानों में काम करने वाले लोगों को लंबे समय तक धूप में और धूल का सामना करना पड़ सकता है। तेज धूप में बाहर निकलते समय आंखों को सीधी तेज रोशनी के संपर्क में लंबे समय तक रखने से बचना चाहिए। जरूरत के अनुसार यूवी सुरक्षा वाले धूप के चश्मे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। विशेषकर खेत में काम करने वाले व्यक्ति धूल, मिट्टी और पौधों के कण आंखों में जाने से बचाने के लिए सुरक्षा चश्मे का उपयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: आंखों की स्वच्छता श्रोता साथियों बेहद जरूरी है। चेहरा धोते समय साफ पानी का इस्तेमाल करें। आंखों को बार बार गंदे हाथों से न छुएं। अगर आंख में धूल चली गई है तो उसे जोर जोर से रगड़ने के बजाय साफ पानी से धोने की कोशिश करें। आंखों को रगड़ना नुकसानदायक क्यों हो सकता है? क्योंकि इससे आंखों के बाहरी सतह पर जलन और चोट का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी बात, किसी दूसरे व्यक्ति का तौलिया, रुमाल या आंखों में लगाने वाली चीजें हमें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से आंखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सही उपाय क्या है, इसको लेकर हम बातें कर ही रहे हैं। तो ये बातें हमारे श्रोता साथियों से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम आंखों की देखभाल को लेकर ढेर सारी बातों को जान पाए, यही श्रोता साथियों, हम दिन भर कई चीजें छूते हैं, दरवाजे, मोबाइल, पैसे, मिट्टी, पशुओं से जुड़ी वस्तुएं और कई अन्य सामान। अगर गंदे हाथों से आंखों को छुआ जाता है तो आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: खाना खाने से पहले, आंखों को छूने से पहले हाथों को साबुन और साफ पानी से धोने की आदत डालें। बच्चों को यह आदत बचपन से हमें सिखानी होगी। आंखों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार भी महत्वपूर्ण है। अपने भोजन में श्रोता साथियों, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध या उपलब्ध अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमें शामिल करने हैं। गाजर को आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन केवल गाजर खाने से ही आंखें पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहती।
1: संपूर्ण
0: और संतुलित आहार भी जरूरी है। इसी के साथ ग्रामीण परिवारों में उपलब्ध स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करके भी पोषण बेहतर किया जा सकता है। श्रोता साथियों, बच्चे और बड़े जब किताबें पढ़े या लिखने का काम करें तो पर्याप्त रोशनी होना बहुत जरूरी है। बहुत कम रोशनी में पढ़ने से मनीषा आंखों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है और आंखें जल्दी थक जाती हैं। पढ़ते समय किताब और कॉपी को आंखों से बहुत ज्यादा पास न रखें। लंबे समय तक पढ़ने पर बीच बीच में थोड़ा हमें आराम भी लेने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ बात करें कि आंखों में किसी भी तरह की हमें चीज जो डालनी होती है, दवाई, या वो हमें स्वयं नहीं डालनी है। श्रोता साथियों, इससे हम देखते हैं कि हमारे आंखों में लालिमा, खुजली या जलन होने से हमें और ज्यादा तकलीफ हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप आंखों में दवाई डालते हैं या कोई घरेलू पदार्थ डालते हैं तो हमें खुद से नहीं डालना है, इससे हमारी आंखों की समस्या है वो बढ़ सकती है। तो घर का कोई सदस्य हो पास में तो उससे भी हम अपने आंखों में डलवा सकते हैं। साथियों, किसी व्यक्ति को किसी दवा से फायदा हुआ हो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दवा दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही होगी। आंखों की दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही श्रोता साथियों में उपयोग में लेनी है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही कहना चाहेंगे कि आंखों की नियमित जांच के भी महत्व को हमें समझना चाहिए, खासकर यदि श्रोता साथियों परिवार में आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, देखने में बदलाव महसूस हो रहा है या पढ़ने लिखने में कठिनाइयां हो रही है तो हमें आंखों की जांच करवानी भी जरूरी है। बच्चे यदि श्रोता साथियों किताबें बहुत पास लाकर पढ़ते हैं या बार बार आंखों को सिकुड़ते हैं या दूर की चीजों को श्रोता साथियों देखने में परेशानी बताते हैं हमें, तो हमें उनकी आंखों की जांच करवानी है और माता पिता को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना है। कई बार अंजलि जी, हम देखते हैं हमारे घर के बच्चे जो होते हैं वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार वो स्क्रीन टाइम या पढ़ाई करते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि ज्यादा देर देखने की वजह से हो रहा है। पर श्रोता साथियों, ये परेशानी आगे जाकर बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए हमें समय पर आंखों की जांच भी करवानी जरूरी है हमारे लिए।
0: बिल्कुल मनीषा, कई लोग कहते हैं कि अभी तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, बाद में ठीक हो जाएगा।
1: जी हाँ।
0: लेकिन यदि बार बार धुंधला दिखाई दे, दूर या पास की चीजें देखने में परेशानी हो, पढ़ते समय सिर दर्द हो, आंखों में दर्द या बार बार पानी आए, तो आंखों की जांच करवानी चाहिए। अगर डॉक्टर चश्मा लगाने की सलाह दे तो चश्मे का इस्तेमाल नियमित रूप से करें, किसी दूसरे व्यक्ति का चश्मा अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल न करें। इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आंखों को स्वस्थ रखने के कुछ आसान सूत्र हैं जो हमें याद रखने हैं।
1: जी हाँ।
0: साफ हाथ, साफ आंखें, संतुलित भोजन, बेहतर पोषण, स्क्रीन से विराम, आंखों को आराम, सुरक्षा का ध्यान, धूल और चोट से बचाव, समस्या दिखे समय पर जांच। श्रोता साथियों, आंखें हमारी जीवन की रोशनी है। हम अपने घर, खेत, परिवार, प्रकृति और इस खूबसूरत दुनिया को इन्हीं आंखों से देखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: आंखों की देखभाल को केवल बीमारी होने के बाद की जाने वाली गतिविधि न माने। आंखों की देखभाल रोज की छोटे छोटे आदतों से शुरू होती है।
1: हाँ।
0: साफ सफाई रखना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्क्रीन से समय समय पर दूरी बनाना, तेज धूप और धूल से आंखों की सुरक्षा करना और आंखों में किसी भी परेशानी को लंबे समय तक नजरअंदाज न करना, ये सभी हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हैं। खास बात यह है कि आंखों से जुड़ी हर परेशानी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना जरूरी नहीं है। आंखों में लगातार दर्द, लालिमा, चोट, अचानक दृष्टि कम होना, धुंधला दिखाई देना या कोई अन्य गंभीर समस्या महसूस हो तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। श्रोता साथियों, आज से ही हम एक संकल्प लें कि आंखों को नहीं रगड़ेंगे, गंदे हाथों से नहीं छुएंगे, स्क्रीन का समझदारी से इस्तेमाल करेंगे, पोषण और नींद का ध्यान रखेंगे और आंखों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: आंखों की रखिए देखभाल, इनसे सुंदर हर एक ख्याल, स्वस्थ आंखें, स्वस्थ जीवन, यही बने हमारा संकल्प महान।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हम देख रहे हैं कि हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। और समय भी हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवावा रामर हित्ता भाई बोने ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बोनो, आप सब हमले रिया हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत करे हैं हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गये हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय निहाते मनीषा बोन। आज अपने कार्यक्रम में भाई बोनो तक की बातचीत नो विषय है कि आ वधतु प्लास्टिक ने आनु खेती माते असर हो पड़े है। आपने देखो हो के आज ना टाइम में आ समस्या जे है ये धीरे धीरे चर्चा नु विषय बनती सही थी है। धीरे धीरे आपड़ी खेती, आपड़ो पर्यावरण, पशु, आपड़ो स्वास्थ्य जे है ये भी प्रभावित थी रू है। आज आपने देखो हो के गांव हो या शहर, बाजार हो या खेत, हर ठेकने आपड़ा ने प्लास्टिक देखवा में मिली सा। दूध ना पूड़ा, इने साथे पानी नी बोतले, चिप्स ना पैकेट ने, इने साथे नमकीन ना पूड़ा ने आ सब जे है ये कुछ मिनट बल्लेस आपड़े काम में लो हो बस आने आपड़े फेंकी दो हो ने आ अपनी मिट्टी ने वर्षो उधी प्रभावित करे है। तो भाई बोनो आपे कारे विचार करू है के खेतों में पड़ू आज प्लास्टिक है ई हरते आपड़े खेती ने अपने भोजन ने प्रभावित करे है। तो आज अपने कार्यक्रम में अणु विषय मात्र घना कनी बातें करूंगा कि आना हूँ कारण है ने आनु प्रभाव हरते पड़े है ने समाधान ना हो उपाय थे सके पर हमने हमरा गीत ने मोरे कर अपनी बातें।
0: होवे अंजलि बोन, तो भाई बोनो हमल तारेजो अपड़ू रेडियो अपड़ी वाती वाग रेडियो 90.8 FM माते।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन को नई उम्मीद, नया भविष्य और नई मुस्कान दे सकता है। हमारा आज का विषय है अंगदान का महत्व।
0: जी बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, सोचिए यदि किसी व्यक्ति की किडनी, लीवर, हृदय या आंखें काम करना बंद कर दे, उसे जीवन बचाने के लिए किसी अंग की आवश्यकता हो तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या होती है? वह उम्मीद है अंगदान, क्योंकि अंगदान केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं होती है मनीषा, बल्कि यह मानवता की सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है।
0: ये
1: एक ऐसा दान है जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन प्रदान कर सकता है। मृत्यु के बाद भी किसी व्यक्ति का एक निर्णय कई लोगों के जीवन में खुशहाल ला सकता है। तो आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि अंगदान का महत्व, लाभ और किस तरीके से इससे जुड़े जो भ्रम है उसको लेकर जागरूकता हमें फैलानी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विशेष से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं अंगदान के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि मानव जीवन प्रकृति का अनमोल उपहार है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक सपने देखता है, परिवार बनाता है, समाज और देश के विकास में अपना योगदान देता है। लेकिन श्रोता साथियों, कई बार गंभीर बीमारी, दुर्घटना या किसी अन्य कारणवश हम देखते हैं कि शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा विज्ञान की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति के स्वस्थ अंग का प्रत्यारोपण करके रोगी को नया अंग दिया जा सकता है। यह प्रक्रिया श्रोता साथियों अंगदान कहलाती है। अंजलि जी, हम देखते हैं कि अंगदान केवल चिकित्सा की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मानवता, करुणा, समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी उदाहरण है। एक व्यक्ति द्वारा किए गए अंगदान से कई लोगों के जीवन की आशा की किरण जाग सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, अंगदान को जीवन बचाने का सबसे महान मानवीय कार्यों में से एक माना जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आज दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वो है अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे हैं। कई बार मरीजों को समय पर अंग नहीं मिलता और उनकी जान चली जाती है। यही हम देखते हैं कि अधिक लोग अंगदान के लिए आगे आए तो हजारों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। अंगदान की आवश्यकता श्रोता साथियों इसलिए बढ़ रही है क्योंकि किडनी रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हृदय रोग, लीवर संबंधित बीमारियां बढ़ रही है, सड़क दुर्घटनाओं और गंभीर बीमारियों के कारण कई लोगों को अंग प्रत्यारोपण की जरूरत पड़ती है, जैसा कि मनीषा आपने बताया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपलब्ध अंगों की संख्या जरूरत की तुलना में बहुत कम है। श्रोता साथियों, दान की परंपरा हमारे समाज में सदियों से चली आ रही है। हम अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, धन दान के बारे में भी सुनते हैं, लेकिन अंग दान इन सबसे अलग और विशेष है। एक व्यक्ति का अंग दान कई लोगों को नया जीवन दे सकता है।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण के लिए एक व्यक्ति की दोनों आंखें दो लोगों को दृष्टि दे सकती है, दो किडनियां दो अलग अलग मरीजों की जान बचा सकती है, लीवर, हृदय और अन्य अंग जो होते हैं वो कई लोगों के लिए जीवन की नई शुरुआत बन सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अंगदान महादान है और जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि अंगदान का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी व्यक्ति को बचाया जा सकता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति और उसके परिवार के लिए अगर श्रोता साथियों अंगदान प्रत्यारोपण हम अगर करते हैं तो उसके जीवन में एक आशा आ जाती है।
1: बिल्कुल,
0: कई बार चिकित्सा उपचार की सीमाओं के कारण श्रोता साथियों हम देखते हैं कि अंग प्रत्यारोपण से रोगी के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है। अंगदान का महत्व केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है। एक दाता द्वारा दान किया गया अलग अलग अंगों के या उत्तकों के कई लाभ मिल सकते हैं। इस प्रकार श्रोता साथियों, एक व्यक्ति का निर्णय कई परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि मानवता का अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं होता है, बल्कि दूसरों के लिए जीवन को बेहतर बनाना भी है। श्रोता साथियों, यकीन मानिए, जब कोई परिवार अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद अंगदान का निर्णय लेता है तब वह दुख की घड़ी में भी किसी अन्य परिजन को खुशियां देने का काम करता है। ये एक ऐसा कार्य है जिसमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र का कोई भेदभाव नहीं होता। अंगदान केवल इंसानियत का संदेश देता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में अंगदान को लेकर कई गलत धारणाएं हैं, जैसे कि अंगदान करने से शरीर को नुकसान होता है। तो श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि जीवित अंगदान पूरी चिकित्सकीय जांच और सुरक्षा के साथ किया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ मृत्यु के बाद शरीर विकृत हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी जगह भी सच्चाई यह है कि अलग निकालने की प्रक्रिया पूरी सावधानी और हम कह सकते अंग निकालने की जो प्रक्रिया है वो पूरी सावधानी से की जाती है और सम्मान के साथ की जाती है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि अंगदान किसी धर्म के खिलाफ है। लगभग सभी प्रमुख धर्म मानव सेवा और जीवन बचाने के महान कार्य मानते आए हैं, इसलिए अधिकांश धर्म अंगदान का समर्थन भी करते हैं। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं मनीषा कि केवल युवा लोग ही अंगदान कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उम्र से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति का स्वास्थ्य जो स्थिति है वो महत्वपूर्ण रखती है। अगर हमारे शरीर के अंग स्वस्थ होंगे तभी हम अंगदान कर सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यह कार्य है वो समाज में सहयोग और मानवता की भावनाओं को भी मजबूत करता है।
1: बिल्कुल,
0: जब लोग अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी अनजान व्यक्ति की सहायता करने के बारे में सोचते देखते हैं तो श्रोता साथियों तब हम देखते हैं कि समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना है वो बढ़ती है।
1: बिल्कुल।
0: जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं साथियों जब किसी व्यक्ति का कोई महत्वपूर्ण अंग गंभीर रूप से खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में सामान्य उपचार पर्याप्त नहीं होता है साथियों। डॉक्टर की सलाह और उचित चिकित्सीय जाँच से अंजलि जी हम देखते हैं कि यह प्रत्यारोपण है वो आवश्यक हो जाता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें हमारी श्रोता साथियों से चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने अंग दान को लेकर जो भ्रांतियां थी समाज में, उसको लेकर बातचीत की, यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अंग दान के बारे में जानकारी अभी भी सीमित है। कई लोग इसके महत्व को नहीं समझते या अफवाहों पर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए सामुदायिक रेडियो, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को सही जानकारी दें। जागरूकता बढ़ाने के लिए गांवों में जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं, स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा सकते हैं, युवाओं को अंगदान के बारे में बताया जा सकता है, स्कूलों और कॉलेज में विशेष कार्यक्रम किए जा सकते हैं। इसी के साथ रेडियो और सामाजिक मीडिया के माध्यम से जानकारी पहुंचाई जा सकती है। श्रोता साथियों, युवा किसी भी सामाजिक बदलाव के सबसे बड़े वाहक होते हैं। यदि युवा अंगदान के प्रति जागरूक होंगे तो वे अपने परिवार और समाज को भी जागरूक कर पाएंगे। युवाओं को चाहिए कि अंगदान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, दूसरों को जागरूक करें, सामाजिक अभियानों में भाग लें और इसी के साथ मानवता की इस सेवा के लिए सकारात्मक सोच भी विकसित करें।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि अंगदान का सरल अर्थ है श्रोता साथियों, किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंगों या उत्तकों को दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति के उपचार में दान करना। चिकित्सा विज्ञान की प्रगति ने अंग प्रत्यारोपण को संभव बनाया है श्रोता साथियों। कई गंभीर रोगों में जब किसी मरीज का अंग पर्याप्त रूप से काम नहीं करता है, तब अंजलि जी हम देखते हैं कि प्रत्यारोपण उसके उपचार का महत्वपूर्ण विकल्प बन जाता है। अंगदान मुख्य रूप से श्रोता साथियों दो प्रकार का माना जाता है। पहला तो हम देखते हैं कि श्रोता साथियों, जीवित व्यक्ति द्वारा अंगदान कुछ मुख्य परिस्थितियों में किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा है श्रोता साथियों, वो है किसी मृत व्यक्ति द्वारा किया गया अंगदान।
0: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं कि अंगदान का निर्णय केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का विषय भी होता है। इसलिए परिवार के सदस्यों को इस विषय पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। यदि परिवार जो है वो पहले से अंगदान की इच्छा के बारे में जानते हो तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। परिवार की अहमियत और जागरूकता अंगदान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम देखते हैं कि हम सभी समाज का एक हिस्सा है। जिस प्रकार हम रक्तदान, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण जैसी गतिविधियों में भाग लेते हैं, उसी प्रकार अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाना भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। अंगदान हमें यह सिखाता है कि हमारा जीवन केवल हमारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी है। जीवन अनमोल है और किसी को जीवन देने से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। अंगदान हमें यह संदेश देता है मनीषा कि इंसान की अच्छाई उसकी सांसों के साथ समाप्त नहीं होती बल्कि उसके जाने के बाद भी दूसरों के जीवन में रोशनी बनकर जीवित रह सकती है। जब एक व्यक्ति अंगदान करता है तब वह केवल एक अंग नहीं देता बल्कि किसी माँ को उसका बेटा, किसी बच्चे को उसका पिता, किसी परिवार को उसकी खुशियां और किसी अंधेरे जीवन को नई रोशनी देता है। यह संवेदनशीलता, करुणा और मानवता का सर्वोच्च उदाहरण है। इसलिए हम सभी अंगदान के महत्व को समझे, इसके बारे में सही जानकारी प्राप्त करें और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लें, क्योंकि किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बनाना ही सच्ची मानव सेवा है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि किसी मरीज के लिए प्रत्यारोपण केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है बल्कि जीवन में एक नई शुरुआत का अवसर भी हो सकता है। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे व्यक्ति और उसके परिवार के लिए अंगदान उनके जीवन में एक आशा बन सकती है। कल्पना कीजिए साथियों कि किसी परिवार का कोई सदस्य है वो स्वस्थ या किसी गंभीर बीमारी के कारण किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तब अंजलि जी हम देखते हैं कि इलाज के दूसरे विकल्प सीमित हो सकते हैं साथियों, लेकिन ऐसे समय में अंग प्रत्यारोपण है वो उसके लिए एक नया विकल्प बन सकता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि अंगदान के महत्व को समझना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो हम कितने भी दान कर ले उससे सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक प्रगति से नहीं होती बल्कि संवेदनशीलता और मानवता से भी होती है। अंगदान ऐसा ही एक कदम है जो हमें एक दूसरे के जीवन से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि इंसान का अस्तित्व केवल अपने लिए जीने तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरों के लिए कुछ छोड़ जाने में भी उसकी महानता छिपी होती है। आज विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है, लेकिन लाखों मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी समय पर अंगदान उपलब्ध होना है। हम देखते हैं कि ऐसे में जागरूक नागरिक के रूप में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। यदि समाज में अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हो जाए तो न जाने कितने परिवार अपने प्रियजनों को खोने के दुख से बच सकते हैं और कितने लोगों को नया जीवन मिल सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि इसमें परिवार की क्या भूमिका होती है इसकी, तो श्रोता साथी हम देखते हैं कि अंगदान के विषय में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
0: बिल्कुल,
1: यदि कोई व्यक्ति अंगदान के बारे में अपनी इच्छा रखता है तो उसे अपने परिवार के सदस्यों को इस विषय के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। परिवार के साथ पहले बातचीत करना, परिवार को पता होना चाहिए साथियों की व्यक्ति की इच्छा क्या है। कई बार अंजलि जी हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने जीवन में अंगदान के बारे में सोचा होता है लेकिन परिवार को उसकी जानकारी नहीं होती है, ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अंतिम समय पर निर्णय लेना है वो कठिन हो जाता है। इसलिए परिवार के साथ पहले बातचीत करना जागरूकता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिवार में इस विषय पर बातचीत करना श्रोता साथियों डर की बात नहीं बल्कि यह जिम्मेदार नागरिक होने का संकेत है। हमें मृत्यु जैसे संवेदनशील विषय पर श्रोता साथियों शांत और समझदारी से बात करना हमारे लिए जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत वृद्धि की है। हम देखते हैं कि लाखों मरीजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अभी भी समय पर अंगदान उपलब्ध होना नहीं है। अंगदान केवल डॉक्टर या अस्पतालों का विषय नहीं है बल्कि ये पूरे समाज की सहभागिता से सफल होने वाला अभियान है। जब गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संस्थाएं और युवा मिलकर इस विषय पर खुलकर बात करेंगे तभी लोगों के मन में बैठे डर और भ्रांतियां दूर होंगी। जागरूकता ही वह शक्ति है जो इस नेक कार्य को जन आंदोलन का रूप दे सकता है। हमें ये भी समझना होगा श्रोता साथियों कि जीवन की वास्तविक सफलता केवल अपने लिए उपलब्धियां हासिल करने में नहीं बल्कि किसी और के जीवन में आशा का कारण बनने में है। अंगदान का संदेश हमें निस्वार्थ सेवा, करुणा और परोपकार की भावना से जोड़ता है। यह आने वाली पीढ़ियों को भी मानवता का एक सुंदर उदाहरण देता है। इसलिए हम ऐसा समाज बनाने का प्रयास करें जहां किसी मरीज को केवल अंगों की कमी के कारण अपना जीवन गंवाना न पड़े, जहां लोग अंगदान को भय या संकोच की दृष्टि से नहीं बल्कि मानव कल्याण के एक महान अवसर के रूप में देखें। यही जागरूकता, यही संवेदना और यही सहयोग एक स्वस्थ, सहृदय और जिम्मेदार समाज की नींव बनेगा।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रहे थे अंगदान के महत्व को लेकर,
1: जी हाँ,
0: यही अगर बात करें अंजलि जी की मृत्यु के बाद अंगदान का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद अंगदान के बारे में समाज में कई प्रकार की गलत धारणाएं पाई जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: कुछ लोग अंजलि जी सोचते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ कोई किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ी करना उचित नहीं है। कुछ लोग धार्मिक या सामाजिक मान्यताओं के कारण भी श्रोता साथियों भ्रमित रहते हैं। वास्तव में कहना चाहेंगे कि अंगदान से जुड़े निर्णय और प्रक्रिया चिकित्सकीय तथा कानूनी नियमों के अनुसार की जाती है।
1: बिल्कुल,
0: किसी व्यक्ति या परिवार का इस विषय में निर्णय लेना हमारे डॉक्टरों और विशेषज्ञों के लिए बहुत जरूरी होता है। हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद अंगदान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए अपने परिवार की इच्छा के बारे में पहले बताना भी महत्वपूर्ण है। इससे श्रोता साथियों जरूरत पड़ने पर परिवार उसके निर्णय को समझ सके और संबंधित प्रक्रियाओं में सहयोग कर सके।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि अंगदान महादान कहा जाता है, क्योंकि ये कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जीवन दान देता है, और हम देखते हैं कि कई परिवारों की जो खुशी है वो फिर से उन्हें मिल पाती है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंट में या किसी भी चीज की वजह से किसी व्यक्ति का कोई अंग खराब हो जाता है, अगर हम अंगदान करते हैं तो उससे उस व्यक्ति को फिर से नया जीवन मिलता है। तो श्रोता साथियों, हमें अंगदान के महत्व को अवश्य समझना है, क्योंकि बहुत से अभी के समय में जो लोग हैं वो अंगदान के उपलब्ध न होने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब हम अपने जीवन की यात्रा को देखते हैं मनीषा, तो हमें महसूस होता है कि इंसान अपने साथ धन संपत्ति या पद नहीं ले जाता, लेकिन उसके अच्छे कर्म और उसके द्वारा किए गए जो परोपकार है वो हमेशा याद किए जाते हैं। अंगदान भी ऐसा ही एक महान कार्य है जो किसी व्यक्ति के जाने के बाद भी उसके अस्तित्व को समाज में जीवित रखता है। ऐसी विरासत है श्रोता साथियों जो यादों से आगे बढ़कर सीधे किसी के जीवन को संवारती है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अंगदान को केवल चिकित्सीय प्रक्रिया के रूप में न देखें, बल्कि इसे सामाजिक चेतना और मानवीय जिम्मेदारी के रूप में समझें। जिस प्रकार हम अपने परिवार और समाज के सुख दुख में भागीदार बनते हैं, उसी प्रकार हमें उन अनजान लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जो किसी अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए एक दान किया गया, हम कह सकते हैं कि उनके लिए किया गया एक दान जो है वो अंग की चमत्कार से कम नहीं होता। समाज में बदलाव हमेशा जागरूकता से शुरू होता है। जब लोग सही जानकारी प्राप्त करते हैं मनीषा, खुलकर चर्चा करते हैं और सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तब बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव हो जाता है। इसलिए जरूरत है कि अंगदान के विषय को घर, परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय और सामाजिक मंचों पर सम्मान पूर्वक चर्चा का विषय बनाया जाए। जितनी अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचेगी उतना यह अभियान मजबूत होगा।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि इसमें अपने युवाओं की क्या भूमिका है इसकी, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि युवा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उसमें नई जानकारी सीखने, दूसरों को पहचानने और सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता होती है। इसलिए अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: युवा अपने विद्यालय, महाविद्यालय, सामुदायिक सामाजिक मंचों पर अंगदान के बारे में जानकारी को साझा कर सकते हैं। वे लोगों को अफवाहों और गलत धारणाओं से बचाने के लिए भी जानकारी दे सकते हैं साथियों।
1: जी जी।
0: और हम देखते हैं कि अंजलि जी, युवाओं के माध्यम से अंगदान को मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर समझाया जा सकता है। इससे आने वाली पीढ़ियों को सहयोग और संवेदनशीलता की जो भावना है वो भी उनके अंदर मजबूत होती है। श्रोता साथियों, आज हम देखते हैं कि अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केवल अस्पतालों या डॉक्टरों की भूमिका पर्याप्त नहीं है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वर्ग इसके बारे में जानकारी देना आवश्यक है। विद्यालय और महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। सामुदायिक रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविजन, डिजिटल माध्यमों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि इसको लेकर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लोग इस चीज को लेकर जागरूक नहीं होंगे तब तक हम देखेंगे कि इन सारी चीजों में बदलाव आएगा ही नहीं। इसलिए अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के लिए हम सभी को जागरूक होकर समुदाय के लोगों से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि श्रोता साथियों अंगदान हमें यह भी सिखाता है कि मानव जीवन का सबसे सुंदर पहलू दूसरों के काम आना है। किसी अनजान व्यक्ति की धड़कनों को जारी रखने, किसी की आंखों में फिर से रोशनी लाने, किसी परिवार को फिर से मुस्कुराने का अवसर देना हर किसी को नहीं मिलता। अंगदान उसी दुर्लभ अवसर का नाम है जहाँ एक निर्णय कई जीवन में आशा, विश्वास और खुशियों का संचार कर सकता है। हम ऐसा वातावरण तैयार करें श्रोता साथियों जहाँ सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता केवल शब्द न बने रहें, बल्कि हमारे व्यवहार का हिस्सा बने। एक जागरूक समाज, एक संवेदनशील परिवार और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सभी का यह कर्तव्य बनता है श्रोता साथियों कि जीवन बचाने वाले इस संदेश को अधिक से अधिक हम लोगों तक पहुँचाएं, क्योंकि किसी के जीवन में उम्मीद बनना ही इंसानियत की सबसे बड़ी पहचान है। इन्हीं विचारों के साथ श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि खुद भी स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, मानवता के प्रति अपने जो दायित्व हैं उन्हें समझते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के वाहक बनिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों अक्सर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी की बात करते हैं। हम पेड़ लगाते हैं, रक्तदान करते हैं, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं। अंगदान भी श्रोता साथियों सामाजिक जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण रूप है। हर व्यक्ति का निर्णय अलग हो सकता है साथियों, और किसी भी अंगदान के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन समाज में सही जानकारी उपलब्ध कराना और लोगों को सोच समझ कर निर्णय लेने का अवसर देना भी हमारी सामुदायिक जिम्मेदारी है। जब समाज के लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आते हैं तो अंजलि जी हम देखते हैं कि समाज के जो संबंध है वो मजबूत होते हैं और मानवता का

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हम जान ही रहे थे कि अंगदान का क्या महत्व है और किस तरीके से लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। श्रोता साथियों, यही आपको कहना चाहेंगे कि अंगदान का विषय केवल चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन के उन मूल्यों से जुड़ा है जो हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार बनाते हैं। एक विकसित और जागरूक समाज वही होता है मनीषा, जहाँ लोग केवल अपने अधिकारों और आवश्यकताओं के बारे में नहीं सोचते, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आगे आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अंगदान इसी सोच का सशक्त उदाहरण है। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है और स्वास्थ्य सेवाओं में नई नई उपलब्धियां सामने आ रही है, तब भी हजारों लोग केवल इसलिए जीवन की लड़ाई हार जाते हैं क्योंकि उन्हें समय पर आवश्यक अंग नहीं मिल पाता। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि यदि समाज में अंगदान के प्रति जागरूकता और सहभागिता बढ़े तो अनेक परिवारों को अपनों को खोने का जो दर्द है वो सहन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यह जरूरी है कि हम इस विषय को केवल सुने या समझे ही नहीं, बल्कि इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित करें। अंगदान का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि यह निस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाता है। इसमें दान देने वाला व्यक्ति किसी पहचान, पुरस्कार या लाभ की अपेक्षा नहीं रखता। उसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन सुरक्षित हो सके। यही भावना समाज में भाईचारे, सहयोग और करुणा को मजबूत बनाती है। जब ऐसे विचार जो हैं, वो लोगों के बीच फैलते हैं तो समाज के अधिक मानवीय और संवेदनशील बनता है। हमें ये भी समझना होगा कि जागरूकता की शुरुआत हमारे अपने घरों और समुदाय से होती है। यदि परिवारों में इस विषय पर खुलकर चर्चा होगी, यदि युवा सही जानकारी प्राप्त करेंगे और यदि सामाजिक संस्थाएं लोगों तक कह सकते हैं कि तथ्यात्मक जानकारी पहुंचाएगी, तो अंगदान के प्रति मौजूद झिझक और भ्रांतियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। सामुदायिक रेडियो जैसे माध्यम इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि वे सीधे लोगों तक पहुंचकर सरल भाषा में जागरूकता का संदेश देते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि अंगदान के लिए हमें क्या करना चाहिए उसकी, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें अंगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बाद अपनी इच्छा और विचारों के बारे में परिवार से खुलकर हमें बात करनी है। यदि कोई व्यक्ति अंगदान का निर्णय लेना चाहता है तो उसे अपने क्षेत्र की अधिकृत स्वास्थ्य संस्था या संबंधित सरकारी जानकारी ही उस वो सब लेनी है। सोशल मीडिया पर मिलने वाली हर जानकारी पर भरोसा करना सही नहीं होता है श्रोता साथियों। अंगदान से जुड़े नियम और पात्रता समेत साथ ही स्थान के अनुसार हो सकती है। इसलिए साथियों, अधिकारी स्त्रोतों की जानकारी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कहना चाहेंगे कि अंगदान मानवता और संवेदनशीलता और जीवन के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह किसी जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में नई संभावना देने का माध्यम बन सकता है। चिकित्सा विज्ञान ने अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन श्रोता साथियों, जरूरतमंद मरीजों और उपलब्ध अंगों के बीच अंतर को समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है और साथ ही समाज में जागरूकता बढ़ाना भी हमारे लिए आवश्यक है।
0: जी हाँ मनीषा, तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने जाना कि अंगदान का क्या महत्व है और किस तरीके से हमें अंगदान करना चाहिए। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को
1: नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

सेहत नु राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारे बीच आपका बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। श्रोता साथियों, अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपनी फरमाइश की गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा नंबर है 9414082643 पर। श्रोता साथियों, इस नंबर को मैं फिर से बताना चाहूँगी, क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने व्हाट्सएप के SMS और राय सुझाव हमें बता सकते हैं और फरमाइशी गीत भी भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, हमें इंतज़ार रहेगा आपके फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो मैं फिर से बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश की ओर। साथियों, पहली फरमाइश हमारे बीच आई है पाड़ी कला से। फिल्म का नाम है जीत। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे सोनू निगम और अलका याग्निक जी ने इस गीत को आवाज़ दी है। साथियों, फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं पुष्पा कुमार, हेमंत टेलर, आशाराम जी, रमेश लाल, श्याम लाल, घनश्याम जी। घाटोल से जुड़ रहे हैं राधेलाल, लालाराम, अरविंद, राहुल जी, जसवंत, गमंडी लाल, मेघराज मीणा और कपिल शर्मा जी। और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। बांसवाड़ा से जुड़ रहे सत्येंद्र कुमार चौहान, नरेश चौहान, जयवर्धन मेहनारिया, सत्यम मीणा जी, शिवम, संजीव, समलेश जी और रोहित वजेंद्र अरुण जी। इसी बीच श्रोता साथी राय बरेली से हैं अरुण कुमार जी, गणेश लाल, जसवंत, संजय, अखिलेश, हेमराज मीणा, चरण सिंह और श्याम प्रसाद जी। तो आइए साथियों, सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों, फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हो चुका है और बहुत ही अच्छी फरमाइश अभी हमने कार्यक्रम की पहले सुनी साथियों। इसी बीच में बढ़ना चाहूँगी हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी, फिल्म का नाम है बागवान, गीत के बोल हैं धरती तर से अंबर बरसे। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं तरवाड़ा से, सत्येंद्र कुमार चौहान जी, अरुण गणेश लाल, जसवंत संजय, अखिलेश हेमराज मीणा जी। इसी बीच डाबरा खुर्द सवाई माधोपुर से जुड़ना चाह रहे हैं अरविंद राहुल, जसवंत जी, श्यामलाल घनश्याम, राधेश्याम लाला राम जी, श्याम प्रसाद बंदोली जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। निकिता शर्मा, अरविंद राजेश शर्मा, राजकुमार चिड़ियावासा से जुड़ रहे हैं, मुकेश शर्मा, महेंद्र इमरन, वीरेंद्र, शैलेंद्र सत्यम जी, प्राणी सुरेंद्र मीणा जी, ये प्रतापपुर से जुड़ रहे हैं, और बांसवाड़ा से हैं देवेंद्र प्रजापत, अभिनव दयाल शर्मा, हंसराज विकास, वीरेश चौहान और मिथिलेश जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं धरती तर से अंबर भर से। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साय से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी रायबरेली से। फिल्म का नाम है जान तेरे नाम, गीत के बोल है हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं मेघराज मीणा, अनूप चौहान, दीपक कुमार, सुंदरलाल अवधेश रामेश्वरम जी, गणेश लाल, संदीप चौहान, देवेंद्र कटारा जी, ये दानपुर से जुड़ रहे हैं। सियापुर से श्रोता साथी हंसराज, विकास, वीरेश चौहान, मिथिलेश जी। प्रतापपुर से जुड़ना चाह रहे सुरेंद्र मीणा, प्राणी, सत्यम, शैलेंद्र, वीरेंद्र जी, दयाल शर्मा, अभिनव शर्मा जी, देवेंद्र प्रजापत जी, राजकुमार जी और राजेश शर्मा, अरविंद, निकिता शर्मा जी। इसी बीच चित्तौड़ से जुड़ना चाह रहे हैं हमारे श्रोता साथी पन्नालाल, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, बंटी प्रजापत, मनोहर हनुमंत, ओम रक्कार राव, सीताराम, राधेलाल, दिनेश चंद्र, विशाल, संदीप पांडे जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं हम लाख छुपाएं प्यार मगर।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, हम लाख छुपाएं प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा आएगा। इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, गीत के बोल हैं तारे हैं बाराती। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में, नाम बताना चाहूँगी। रायबरेली से मेघराज मीणा, विशाल दिनेश चंद्र राधेलाल जी। सूरपुर से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। तेजपुर से जुड़ना चाह रहे हैं बंटी प्रजापत, रमेश प्रसाद, मनोहर जी, हनुमंत जी, ओमकार रावत, रमेश प्रसाद, रविशंकर गुप्ता, जशवंत कुमार, पन्नालाल जी। और भी साथी जुड़ रहे हैं घाटोल से, हरिचरण कुमार जी, महेंद्र डामोर, सीताराम डामोर, अनिल कुमार डामोर, सुरेंद्र चौहान, श्याम सुंदर, शंकर जी। मेरठ से हैं अनिल जैन, सीएम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तारे हैं बाराती। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, बहुत ही प्यारा सा गीत था, तारे हैं बाराती चांदनी है ये बारात। इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है संगीत, गीत के बोल हैं और अब्बा कोई तो बताए ये इश्क होता है क्या। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में घाटोल सूरपुर से सीताराम राधेलाल, दिनेश चंद्रा जी, ओमकार रावत जी, हनुमंत मनोहर जी और भी हमारे दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। बांसवाड़ा से हैं आनंद संदेश कुमार जी, अखिलेश भोला देवी जी, भैयालाल शिव कुमार जी, रामस्वरूप जी, राकेश राम सेवक, सत्येंद्र रविंद्र, शैलेश जी। कुशलगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं मेघराज मीणा, प्रेम डामोर, अक्षय कुमार जी, अरुण सुरेंद्र, दिनेश कटारा, लांबालाम लालाराम जी, केशव प्रसाद जी, सीताराम देवीराज, प्रमोद प्रजापत, रतन कुमार, दीपक कुमार, संदीप जैन। आजाद चौक से जुड़ना चाह रहे हैं अभिषेक जैन, वीरेंद्र कुमार, देवेंद्र शर्मा जी, अखिलेश शर्मा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिश शेख, नाजर नाशिश, शाहजी शाहिद, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मिखाल मुजावर जी। तो आइए दोस्तों, मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश की गीत के साथ में। गीत के बोल हैं और अब्बा कोई तो बताए। तब तक आप बने रहिएगा वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथी, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों, हम आपके हैं कौन। गीत के बोल है ये मौसम का जादू है मितवा। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं घाटोल से, संजय कुमार मेघराज मीणा जी, लाला राम शिवाराम जी, संजय कुमार अरविंद शर्मा जी, राधेलाल शर्मा, राहुल कुमार, रामेश्वर गिद्दीराज जी, जयेंद्र कुमार, राघवेंद्र कुमार जी, विक्रम विजय कुमार जी और जागृति वर्मा जी कोटा से जुड़ रही हैं। और भी श्रोता साथी बड़ौदिया से जुड़ना चाह रहे, दिनेश लाल, दीनदयाल, रामलाल, हीरालाल, आनंद कुमार, इसी बीच हमारे साथी हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। पाड़ी कला से है हेमंत टेलर, जलद जोशी, छाया सोनी, कमलेश बुनकर जी, चंद्रपाल कुशवाहा जी, पटेल जी और सोहननाथ चौकी जी, मिनल मेहता, शालिनी जैन, पिंकेश पंचाल जी, निवेदिता सिंह, माजिद खान जी, रोहित स्मित जी और धनराज जी। घाटोल से श्रोता साथी हैं गंगाराम, अभिषेक वर्मा, शिशुपाल, सिद्धार्थ पंड्या जी, मानसिंह निनामा, महेश चंद्र शर्मा, शिवदयाल, शंभुदयाल जी। इसी बीच श्रोता साथी सूरपुर से जुड़ रहे राधेश्याम शर्मा, राजेंद्र शर्मा, शैलेंद्र कुमार, किशन लाल, पूरण कुमार, अखिलेश कुमार, मेघराज मीणा जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। साथियों, पाड़ी कला से नरेश चौहान, हेमंत टेलर, अजय कुमार, दीपक अजित कुमार, दलपत कल सिंह, कल्याण सिंह जी, भूपत कुमार, राधेश्याम शर्मा, सीताराम, गणेश लाल दास जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ये मौसम का जादू है मितवा।
1: के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। 10, 9, 8, 7,

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, गीत के बोल हैं साथियों एक में और एक तू। फिल्म का नाम है खेल खेल में। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं कुंभलगढ़ से, हरिशंकर दायमा, प्रदीप कुमार जी, लक्ष्मण लाला राम, घनश्याम दास जी, सीधराम राधेश्याम, भूपत कुमार जी, कल्याण सिंह जी, काला सिंह जी और दलपत अजीत कुमार जी, दीपक, अजय कुमार, हेमंत टेलर, नरेश चौहान ये पहाड़ी कला से जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। गांटोल रायबरेली से हैं मेघराज मीणा, श्यामलाल, सुरेश कुमार, गंगाराम, आशीष कुमार, रुशिल नीनामा, कल सिंह डामोर, दयाराम कटारा, राजू नीनामा, रतन कुमार जी, बाबूलाल नीनामा और दयाल और परमेश जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं एक मेक और एक तू। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेशर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। आप भी आपकी फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं श्रोता साथियों, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है आकोट महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है दबंग, गीत के बोल हैं तेरे मस्त मस्त दो नैन। इस गीत की फरमाइश करता है नितिन पाटिल, नंदिनी पाटिल, सतीश पाटिल, बाबूजी पाटिल। कोह का बलाई से जुड़ना चाह रही उत्तम सिंह जंगेल, मोहरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजीत कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल और नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रही अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल। इसे भी जुड़ना चाह रहे भागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तेरे मस्त मस्त दो नैन। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी सहारनपुर से। फिल्म का नाम है प्यार झुकता नहीं, गीत के बोल ही तुमसे मिलकर न जाने क्यों। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। इस गीत की अनुरोध करता है जोन डिकिस्टो, रोजी डिकिस्टो, पॉल डिकिस्टो, विलिज डिकिस्टो। इसे भी जुड़ना चाह रहे जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवीद इरशाद, अजात अबूसम जी। बनारस से जुड़ रहे मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नूरीन अंसारी, आफिया परवीन जी। इस गीत के अनुरोध करता है गंजडुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। इसी बीच जुड़ रही है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम ही प्यार झुकता नहीं, गीत के बोल ही तुमसे मिलकर न जाने क्यों। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और शब्बीर कुमार जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं साथियों के फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थी, तुमसे मिलकर न जाने क्यों। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दुर्गा कॉलोनी हांसी से। फिल्म का नाम है ओम शांति ओम। गीत के बोल हैं, आंखों में तेरी अजीब सी अदाएं हैं। इस गीत की फरमाइश करता है राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से। दीपक खटक, प्रमिला खटक, चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ रही हैं सुरेश डोमेन, शालिनी डोमेन। लाहौरा से जुड़ना चाह रहे हैं डोली और प्रभा जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से उमा राज, जगदीश उमा, दीपक उमा, रमेश उमा, अरविंद उमा, कमल जी उमा। जेल रोड खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं दुर्गा कुमारी, सपना ताई, राकेश ताई जी। डुमराव से जुड़ रहे हैं लाल बाबू दीवाना, दिव्या भारती, स्टार मोहम्मद समी जी। सहारनपुर से जुड़ रही महेंद्र यादव, दीप्ति यादव, यामिनी यादव, नरेंद्र जी यादव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से, गीत के बोल ही इश्क सूफियाना। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संगई, महेश संगई, प्रजेश संगई, महेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रहे बख्शर सर से फातमा नाज, बीबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी। जमशेदपुर से जुड़ना चाह रहे हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजु योगदा श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार झांझोरिया, गीता रानी झांझोरिया, गंदीप झांझोरिया, गुड्डू झांझोरिया और गुड्डू जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही इश्क सूफियाना। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मस्तानपुरा से। फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना, गीत के बोल हैं जोगी। इस गीत की फरमाइश करता है अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना जी भगत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चेतन मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चनाताई गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्ध जी, हीरामन शिंदे, प्रतिभाजी गुड़ाने, महेश राम टेके जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जोगी और फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भगवत सिंह। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल ही ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। इस गीत की फरमाइश करता है जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मनीष देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर न्यूतन जी। अम्बाला हरियाणा से जुड़ रहे रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका, नमन, गुरशब्द सिंह राहुल, सिमरत, गुरकिरत सिंह राहुल, विजेंद्र जेजान जी। भद्रावती से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल लोहीवाला, शाहिदा शेख, शाहिल शेख, अब्दुल्ला जी शेख। संगमुंगी से जुड़ना चाह रहे हैं बाबा साहेब कणक्कर, साकरबाई कणक्कर, परमेश्वरी रोहिणी, श्रावणेश्वरी और कणक्कर परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। सलार पहलगाम कश्मीर से जुड़ रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रघुवीर नगर दिल्ली से। फिल्म का नाम है कसूर, गीत के बोल हैं कितनी बेचैन होके। इस गीत की फरमाइश करता है दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायराजी सुरुषी। इसी बीच जुड़ना चाह रही धनुरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ रही हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा जी। और भी साथी जुड़ना चाह रही हैं दिल्ली से राज खोरवाल, रानी खोरवाल, प्रकाश खोरवाल जी। डुमराव से जुड़ रही हैं वली उल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, शबनम बानो जी। जेल रोड बक्सर से जुड़ रही हैं राज एडी अंसारी, फातमा नाज। चंडीगढ़ से जुड़ रही हैं सतीश अनिजा और विमला जी अनिजा। सहारनपुरा से जुड़ना चाह रहे हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अपनम नामदेव जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है कसूर, गीत के बोल हैं कितनी बेचैन होके। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने और उदित नारायण जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सनावत सी। फिल्म का नाम है मोहब्बती, गीत के बोल हैं चलते चलते। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद सूफियान, मोहम्मद हासिम, मोहम्मद इशाक और बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भीड़ शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बिट्टू, पीबी कुतलेश जी, बिरजू परदेसी। भीड़ शहर से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं।

गुप्ता, पुष्पा अग्रवाल, कमल कुतली, मंजूश्री परदेसी और मीरा भूसी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं चलते चलते। तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को, आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM।

मनुष्य के सारे संबंधों का आधार है अपेक्षा। पति कैसा हो जो मेरा जीवन सुख और सुविधा से भर दे, पत्नी कैसी हो जो सदैव मेरे प्रति समर्पित रहे, संतान कैसी हो जो मेरी सेवा करे, मेरा आदेश माने। मनुष्य उसी को प्रेम भी कर पाता है जो उसकी अपेक्षा पूर्ण करता है, और अपेक्षा की तो नियति है भंग होना। कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है, कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की प्रामाणिक इच्छा हो तब भी कोई मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करे केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयमेव सुख और शांति से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिएगा।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मई देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनू खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
0: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुके जाएंगा, खेतर मंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
0: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
0: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ दोस्तों आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज को लेकर अपने नियत समय पर और एक नए विषय के साथ में।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि युवा साथियों, जब भी हम कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से जुड़ते हैं तो बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे कि कामयाबी से सीखना आसान है लेकिन नाकामी से सीखना ज्यादा जरूरी होता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं जागृति जी की हर व्यक्ति सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके प्रयासों की सराहना हो, उसके सपने पूरे हो और वो अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुए।
1: जी हाँ,
0: लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या केवल सफलता हमें आगे बढ़ाती है? क्या असफलता का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है? साथियों, सच तो ये है कि सफलता हमें खुशी देती है, लेकिन असफलता हमें अनुभव के साथ साथ धैर्य और सही दिशा भी देती है।
1: जी हाँ कशिश, तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि क्यों असफलता जीवन का अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत होती है, कैसे नाकामी हमें मजबूत बनाती है और क्यों हर युवा को अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जरूर जानेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं यह गीत।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं, कामयाबी से सीखना आसान है लेकिन नाकामी से सीखना ज्यादा जरूरी है। तो कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन के दो पहलू है। जीवन कभी भी एक सीधी सड़क की तरह नहीं होता, इसमें कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता मिलती है। दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू है, जैसा कि हमने पहले कहा था।
1: बिल्कुल,
0: जब हमें सफलता मिलती है तो लोग हमारी तारीफ करते हैं, हमें सम्मान देते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सफलता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमने सब कुछ सीख लिया है। वहीं दूसरी ओर असफलता हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। वह हमसे सवाल पूछती है कि कहाँ गलती हुई, क्या तैयारी अधूरी थी, क्या तरीका सही नहीं था, क्या हमें और मेहनत की जरूरत है। यही सवाल हमें बेहतर इंसान बनाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जाता है साथियों कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है और अनुभव अक्सर गलतियों से ही मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम असफल होते हैं जागृति जी, तब हमें अपनी कमजोरियां दिखाई देती हैं। हम अपनी योजनाओं की समीक्षा करते हैं और अगली बार बेहतर तैयारी करने की कोशिश करते हैं।
0: जी हाँ,
1: यदि श्रोता साथियों जीवन में कभी हार ही न मिले तो शायद हम कभी सुधार करना भी नहीं सीख पाएंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए असफलता हमें सिखाती है साथियों कि धैर्य कैसे रखा जाता है, मेहनत का महत्व समझना क्या है, गलतियों को स्वीकार करना क्या होता है और दोबारा शुरुआत करने का साहस हम कैसे रख सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही जो परिस्थितियाँ होती हैं वो खुद के अनुसार हम कैसे बदल सकते हैं, ये भी हमें असफलता ही सिखाती है जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो हम कह सकते हैं कि आज का युवा प्रतिस्पर्धा के दौर में जी रहा है। अच्छे अंक लाने का दबाव, नौकरी पाने की चिंता, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, परिवार की अपेक्षा और सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर खुद की तुलना करना, ये सब मानसिक दबाव बढ़ा देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक छोटी सी असफलता भी युवाओं को ये महसूस करा देती है कि उनका भविष्य समाप्त हो गया।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सच्चाई ये नहीं है श्रोता साथियों। एक परीक्षा में असफल होना, किसी नौकरी में चयन न होना या किसी प्रतियोगिता में हार जाना जीवन की अंतिम मंजिल नहीं है, ये केवल एक पड़ाव है जहाँ से आगे बढ़ने का रास्ता निकलता है।
1: जी हाँ जागृति जी, साथियों इतिहास गवाह है कि असफल लोग ही आगे चलकर महान बने हैं।
0: बिल्कुल,
1: दुनिया के अधिकांश सफल लोग अपने जीवन में कई बार असफलता के दौर से गुजरे थे जागृति जी। उन्होंने हार को स्वीकार किया लेकिन खुद को हारने नहीं दिया।
0: बिल्कुल,
1: यदि वे पहली असफलता के बाद बैठ जाते श्रोता साथियों तो शायद दुनिया उन्हें कभी याद ही नहीं रखती। उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था उनकी असफलताओं से मिलने वाली सीख।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि धैर्य, जैसे कि श्रोता साथियों हर अच्छी चीज समय लेती है। असफलता हमें इंतजार करना सिखाती है। आत्मविश्लेषण की अगर बात करें तो हम अपनी कमियों को पहचानते हैं। और अनुशासन से अगर सीखें तो दोस्तों हमें ये समझ आता है कि केवल प्रतिभा नहीं, नियमित मेहनत भी जरूरी होती है।
0: बिल्कुल,
1: बार बार प्रयास करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत बनता है और असफलता हमें जमीन से जुड़े रहना भी सिखाती है जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, सबसे पहले असफलता को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। दूसरों को दोष देने के बजाय हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा।
1: बिल्कुल,
0: गलतियों की सूची बनानी होगी, अनुभवी लोगों से सलाह लेनी होगी, नई योजना बनानी होगी, छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करना होगा।
1: जी जी,
0: यानी कि कहने का तात्पर्य ये श्रोता साथियों कि हम हर असफलता से कैसे सीखें, उसके लिए हमने आपको बताया। आज सोशल मीडिया पर केवल लोगों की उपलब्धियां दिखाई देती हैं, कोई अपनी मेहनत, संघर्ष, साहस और असफलता नहीं दिखाता।
1: जी जी,
0: इसलिए दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमजोर समझना भी सही नहीं है। हर व्यक्ति की यात्रा बहुत अलग होती है, अपने सफर की तुलना किसी और से मत कीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि युवा साथियों से हम बात कर ही रहे हैं कि कामयाबी से सीखना आसान है लेकिन वहीं नाकामी से सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बात कर रहे हैं कि हमें नाकामी से सीखना जरूरी होता है, अगर यही बात करें सोशल मीडिया और सफलता के भ्रम की, तो जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले बताया था कि आज सोशल मीडिया पर लोग केवल उपलब्धियों को ही देखते हैं, ऐसे में श्रोता साथियों हमें परिवार और समाज की भूमिका को भी समझना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि जब कोई युवा असफल होता है तब उसे सबसे अधिक जरूरत होती है विश्वास की, सहयोग की और प्रेरणा की जागृति से। ऐसे समय में परिवार और समाज को आलोचना नहीं बल्कि प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे कि एक सकारात्मक शब्द कई बार किसी युवा के जीवन की दिशा बदल सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, हम हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सफलता केवल पैसा, नौकरी या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता तो वो है जहाँ हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, ईमानदारी से मेहनत करना सीख जाए, लगातार सीखते रहना भी सच्ची सफलता है, और हार मानने के बजाय फिर से प्रयास करना। श्रोताओं याद रखिए, अगर हम आज असफल हुए तो इसका मतलब केवल इतना है कि अभी मंजिल तक पहुंचने का सफर बाकी है।
0: जी हाँ।
1: हर असफलता हमें पहले से अधिक समझदार बनाती है। हार तभी स्थायी बनती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल,
1: जो लोग गिरकर उठना सीख जाते हैं वही जीवन में सबसे ऊंची उड़ान भी भरते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। युवा साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन की राह में सफलता और असफलता दोनों आएंगी।
1: बिल्कुल,
0: सफलता आपको खुशी देगी लेकिन असफलता आपको पहचान देगी साथियों। सफलता तालियां दिलाती है जबकि असफलता चरित्र बनाती है जागृति जी। इसलिए कभी भी अपनी किसी हार को अपनी पहचान मत बनने दीजिए दोस्तों, उसे अपनी असली जीत की तैयारी बनाइए। जब भी जीवन में कोई सपना अधूरा रह जाए, कोई परीक्षा उम्मीद के अनुसार न हो, कोई अवसर हाथ से निकल जाए या मेहनत का परिणाम तुरंत न मिले, तब निराश होने के बजाय ये सोचिए साथियों कि ये समय आपको कुछ नया सिखाने आया है।
1: बिल्कुल,
0: हर ठोकर आपको मजबूत बना रही है, हर चुनौती आपको परिपक्व बना रही है और हर असफलता आप उस सफलता के योग्य बना रही है जो भविष्य में आपका इंतजार कर रही है दोस्तों।
1: बिल्कुल बिल्कुल कशिश, इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं पाते। इसलिए अपने लक्ष्य पर विश्वास रखिए, मेहनत को अपना साथी बनाइए, सीखने की आदत बनाए रखिए और हर असफलता को एक नई शुरुआत का अवसर समझिए।
0: बिल्कुल,
1: और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि आज की हमारी जो बातचीत है वो यही है कि कामयाबी हमारी खुशी का कारण हो सकती है लेकिन नाकामी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का अवसर होती है।
0: जी हाँ,
1: जीवन में हर बार हमारी मेहनत का परिणाम हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आएगा। कभी परीक्षा में अपेक्षित अंक नहीं मिलेंगे, कभी प्रतियोगिता में सफलता नहीं मिलेगी, कभी किसी अवसर के लिए हमारा चयन नहीं होगा और कभी कोई सपना पूरा होने में हमारी सोच से अधिक समय लगेगा। ऐसे समय में खुद पर सवाल उठना स्वाभाविक है, लेकिन खुद को कमजोर मान लेना सही नहीं है, क्योंकि एक असफल परिणाम ये तय नहीं करता कि हम कौन हैं, वो केवल ये बताता है कि हमारे सफर में अभी कुछ सीखना बाकी है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जब कभी नाकामी सामने आए श्रोताओं तो उसे भागिए मत, कुछ समय रुकिए, अपने प्रयास को देखिए और खुद से पूछिए कि मैं इस अनुभव से क्या सीख सकती हूँ।
0: जी हाँ जागृति जी, साथियों जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर सफलता के पीछे कई असफलताओं की कहानी छिपी हुई होती है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में कोई सपना अधूरा रह गया है युवाओं, या कोई परीक्षा उम्मीद के अनुसार नहीं हुई है, या कोई अवसर आपके हाथ से निकल गया है, तो निराश मत होइए।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए असफलता आपकी मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी हाँ,
0: हर ठोकर आपको पहले से अधिक मजबूत बनाती है, हर चुनौती आपको नया अनुभव देती है साथियों, और हर नाकामी आपको कुछ नया सिखाने आती है।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज के दौर में हमें केवल सफलता पाने की नहीं बल्कि सफलता और असफलता दोनों को संभालने की कला सीखने की जरूरत है। सफलता मिले तो विनम्र रहिए श्रोताओं, और असफलता मिले तो धीरे रखिए।
0: बिल्कुल,
1: प्रशंसा मिले तो सीखना मत छोड़िए और आलोचना मिले तो उसे उपयोगी बात निकालने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में एक ऐसी सोच विकसित कीजिए जिसमें हार के बाद पहला सवाल ये न हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बल्कि ये हो कि अब मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं।

0: करने का प्रयास कीजिए और जब कभी मन कहे कि अब नहीं हो पाएगा तब अपने आप से कहिए शायद अभी नहीं हुआ है लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और फिर प्रयास करूँगा, क्योंकि असली जीत केवल मंजिल तक पहुँचने में नहीं बल्कि उस सफर में खुद को लगातार बेहतर बनाने में है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है और जैसा कि समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे दोस्तों को हम सुनवाएं।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जिंदगी निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है, मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में, जहां श्रोता साथियों हर कहानी और हर संवाद के पीछे छुपी होती है हमारे जीवन को बेहतर बनाने की एक छोटी सी कोशिश। अगस्त का महीना आते ही हमारे मन में तिरंगे के रंग, देशभक्ति के गीत, स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की याद ताज़ा हो जाती है। स्कूलों में बच्चे तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं और भाषण देते हैं, साथ ही श्रोता साथियों स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाते हैं। जी हाँ श्रोता साथियों, इस विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वाघ रेडियो 90.8 FM।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुकी हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं आजादी का सही अर्थ बच्चों को कैसे समझाएं। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता दिवस है वो हमारी यादों को ताजा कर देता है। स्कूलों में बच्चे तिरंगा फहराते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं और भाषण देते हैं और स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या श्रोता साथियों, हमने कभी अपने बच्चों से यह पूछा है आजादी आखिर होती क्या है? क्या आजादी का मतलब ही कि हमें कोई कुछ न कहे? क्या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए हम दूसरों को परेशान कर सकते हैं? क्या हमें अधिकार तो चाहिए लेकिन हमारी जिम्मेदारियां नहीं? नहीं साथियों, आजादी का सही अर्थ केवल बंधनों से मुक्त होना नहीं, आजादी का अर्थ ही अपने विचार रखने की स्वतंत्रता, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर, सही और गलत में फर्क समझने की क्षमता और श्रोता साथियों, अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना। श्रोता साथियों, हमारे देश को आजादी बहुत संघर्ष और बलिदान के साथ मिली है, इसलिए बच्चों को आजादी की कहानी केवल तारीख और घटनाओं के रूप में नहीं बल्कि उनके पीछे छुपे त्याग, जिम्मेदारी, अनुशासन, एकता और देश प्रेम के रूप में समझाना भी जरूरी है। आज का हमारा नाटक इसी सवाल से शुरू होता है श्रोता साथियों, अगर हम आजाद हैं तो क्या हमें जो मन आए वह करने की पूरी छूट है? तो श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं एक माँ और बेटी के बीच होने वाली एक ऐसी बातचीत जो शायद हम सबको आजादी का असली अर्थ समझने में मदद करे।
1: मम्मी, एक बात पूछूं?
2: हाँ बेटा, पूछो।
1: स्कूल में कल मैडम कह रही थी कि हमारा देश आजाद है, लेकिन अगर हम आजाद हैं मम्मी, तो इतने सारे नियम क्यों मानने पड़ते हैं हमें?
2: अरे बेटा, बहुत अच्छा सवाल है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि नियम और आजादी एक दूसरे के विरोधी हैं?
1: क्योंकि मम्मी, आजादी का मतलब तो अपनी मर्जी से जीना होता है ना। अगर मैं आजाद हूँ तो मैं जब चाहूँ मोबाइल चला सकती हूँ, जब चाहूँ बाहर जाऊँ, अपनी मर्जी के कपड़े पहनूँ, जो चाहूँ वो बोलूँ, फिर ये इतने सारे नियम क्यों?
2: बेटा, अपनी पसंद रखना गलत नहीं है, अपनी बात कहना भी गलत नहीं है, लेकिन एक बात समझो कि तुम्हारी आजादी वहीं तक है जहाँ से किसी दूसरे के अधिकार और सुरक्षा को नुकसान न पहुँचे।
1: मतलब मम्मी?
2: बेटा, मान लो कि तुम्हें बहुत तेज आवाज में गाना सुनना पसंद है।
1: हाँ हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है।
2: अगर बेटा तुम अपने कमरे में उचित आवाज में सुनो तो ये तुम्हारी पसंद है, लेकिन अगर तुम आधी रात को इतनी तेज आवाज में संगीत चलाओ कि पड़ोस के छोटे बच्चे और बुजुर्ग सो नहीं पाए, तो क्या वह आजादी कहलाएगी?
1: शायद नहीं मम्मी, क्योंकि मेरी वजह से तो दूसरे परेशान होंगे ना।
2: बिल्कुल, आजादी का मतलब केवल मैं क्या करना चाहती हूँ नहीं है बेटा, बल्कि आजादी के साथ ये समझना भी जरूरी है कि मेरे काम से किसी दूसरे पर क्या असर पड़ेगा।
1: तो क्या आजादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है क्या?
2: हाँ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। बेटा, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी इसलिए नहीं चाही थी कि आने वाली पीढ़ियां मनमानी करें। उन्होंने ऐसा भारत चाहा था जहां लोग सम्मान, अधिकार के साथ जीवन जी सके, अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने देश के विकास में योगदान दे सके।
1: लेकिन मम्मी, हमें आजादी मिली कैसे?
2: पिटावनी, ये एक दिन में नहीं मिली है, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष था। हजारों लोगों ने कठिनाइयां झेली, किसी ने जेल की यातनाएं सही तो किसी ने अपना घर छोड़ा और किसी ने अपना जीवन देश के नाम कर दिया। उन्होंने अपने लिए नहीं बेटा, बल्कि भविष्य के लिए संघर्ष किया था।
1: ओह, मतलब आज मैं स्कूल में पढ़ सकती हूँ, अपनी पसंद का सपना देख सकती हूँ और अपनी बात कह सकती हूँ, तो इसके पीछे भी आजादी का योगदान है मम्मी?
2: बिल्कुल, और इसलिए आजादी की कीमत समझना भी हमारी ही जिम्मेदारी है।
1: तो अगर कोई बच्चा कहे कि मैं आजाद हूँ इसलिए स्कूल नहीं जाऊंगा, तो क्या वह आजादी है मम्मी?
2: नहीं बेटा, शिक्षा से दूर होना आजादी नहीं है। शिक्षा तुम्हें अपने फैसले समझदारी से लेने की क्षमता देती है।
1: अच्छा, और अगर कोई कहे कि मैं आजाद हूँ इसलिए किसी का मजाक उड़ाऊंगा, तो क्या ये सही है?
2: वह भी आजादी नहीं है। अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी को अपमानित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है बेटा अवनी।
1: अच्छा मम्मी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये पसंद है और मैं वही करूँगी, चाहे घर का कोई काम मैं न करूँ, तो क्या ये मेरी आजादी है?
2: फिर तुम्हें आजादी के साथ एक और शब्द सीखना पड़ेगा बेटा।
1: वो क्या?
2: कर्तव्य।
1: कर्तव्य, ये क्या होता है?
2: हाँ बेटा, घर में अपनी जिम्मेदारी निभाना, स्कूल में ईमानदारी से पढ़ना, सार्वजनिक जगहों को साफ करना, पानी बिजली की बचत करना, पेड़ पौधे की देखभाल करना और दूसरों का सम्मान करना, ये सब जिम्मेदार नागरिक होने की निशानी होती है।
1: अब मुझे सब समझ आ रहा है। आजादी का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी मर्जी करूं, बल्कि आजादी का मतलब तो ये है कि मैं अपनी पसंद, अपने सपनों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करूं, है ना मम्मी?
2: बिल्कुल सही, और बच्चों को यही बात समझाना सबसे जरूरी है।
1: मम्मी, अगर मुझे आजादी का सही अर्थ अपने दोस्तों को समझाना हो तो मैं क्या कहूंगी?
2: बेटा, उन्हें कोई लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं है, अपने व्यवहार से समझाओ।
1: व्यवहार से? वो कैसे?
2: बेटा, अगर स्कूल में तुम्हारी सहेली की राय तुमसे अलग है तो उसकी बात सुनो। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसकी मदद करो। बेटा, अगर तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है तो शांत पूर्वक अपनी बात रखो, और जब तुम्हें कोई जिम्मेदारी दी जाए तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ।
1: अच्छा, मतलब आजादी की शुरुआत हमारे रोज के छोटे छोटे कामों से होती है ना?
2: हाँ, देश के लिए जिम्मेदार नागरिक बनने की शुरुआत घर और स्कूल से ही होती है बेटा।
1: अब मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ झंडा फहराना और मिठाइयाँ खाना काफी नहीं है।
2: बिल्कुल नहीं, उस दिन हमें यह भी सोचना चाहिए बेटा कि हम अपने देश की आजादी का सम्मान कैसे कर रहे हैं।
1: हाँ, तो इस बार स्कूल में एक बात मैं जरूर कहूँगी, हमें आजादी मिली है अपनी पहचान बनाने की, लेकिन दूसरों की पहचान मिटाने की नहीं। हमें बोलने की आजादी मिली है, लेकिन किसी को अपमानित करने की नहीं। हमें आगे बढ़ने का अवसर मिला है, लेकिन दूसरों को पीछे धकेलने का नहीं।
2: शाबाश बेटा, अगर हर बच्चा आजादी का अर्थ इसी तरह समझने लगेगा तो हमारा देश फिर से आजाद ही नहीं बल्कि और भी मजबूत बनेगा।
1: हाँ मम्मी, अब मैं एक वादा करूँ?
2: हाँ बेटा,
1: मैं अपने अधिकारों को समझूंगी लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं भूलूंगी। मैं अपनी बात कहूंगी लेकिन दूसरों की बात भी सुनूंगी मम्मी, और साथ ही मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगी, लेकिन किसी और के सपनों का

0: मजाक नहीं उड़ाऊंगी और सबसे बड़ी बात, मैं अपने देश की आजादी की कीमत समझूंगी।
1: यही तो सच्ची आजादी की समझ है बेटा।
2: तो श्रोता साथियों, आपने सुना कि आजादी केवल अपनी इच्छा पूरी करने का नाम नहीं, आजादी अधिकार भी देती है और जिम्मेदारी भी सिखाती है। बच्चों को आजादी का अर्थ समझाते समय हमें उन्हें केवल स्वतंत्रता संग्राम की तारीख याद नहीं करवानी चाहिए, बल्कि यह भी बताना चाहिए कि आज हमें मिली स्वतंत्रता को अपने अच्छे व्यवहार और जिम्मेदारी से कैसे मजबूत करना है। उन्हें बताएं श्रोता साथियों कि अपनी बात कहना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी जरूरी है। अपने सपनों को देखना जरूरी है, लेकिन दूसरों के सपनों का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। अपने अधिकारों को जानना भी जरूरी है, लेकिन अपने कर्तव्यों को निभाना भी हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, आजादी हमें मनमानी करने की छूट नहीं देती, बल्कि सही निर्णय लेने की ताकत देती है। आइए श्रोता साथियों, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने बच्चों के साथ केवल तिरंगा न फहराएं, बल्कि उनके मन में जिम्मेदारी, सम्मान, समानता और देश प्रेम की भावनाओं को भी जगाएं। उन्हें यह समझाएं कि देश की आजादी को सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका ईमानदार बनना, मेहनत करना, प्रकृति की रक्षा करना, दूसरों का सम्मान करना और साथ ही श्रोता साथियों अपने समाज के लिए जिम्मेदारी निभाना है। और अपने बच्चों से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर आजादी हमें अपने सपने पूरे करने का अधिकार देती है तो अपने देश को समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। शायद यही सवाल है श्रोता साथियों, उन्हें आजादी का सही अर्थ समझने की दिशा में सबसे बड़ा कदम देगा। याद रखिए श्रोता साथियों, सच्ची आजादी वही है जहां अधिकारों के साथ जिम्मेदारी हो, अपनी खुशियों के साथ दूसरों की खुशी का भी ख्याल हो और अपने सपनों के साथ देश के भविष्य की चिंता हो। इसी संदेश के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी श्रोता साथियों, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते ही एक और प्यारे से गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

दोस्तों इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को केवल आज़ादी की कहानी मत सुनाइए, उन्हें आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ जीना भी सिखाइए। इन्हीं बातों के साथ श्रोता साथियों आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करूंगी कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहे, जो नाटक रहा वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन वाघ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो जोनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र किसान भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सब नु घणे मान स्वागत कर रहा अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की किसान भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई गए हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नवा विषय ने हाते। तो किसान भाई बोन आज हमारी आप तक की बातचीत नो विषय है कि अवड़े ना टाइम में अपनी जे फसले है एनो नो ध्यान अपने हरते राखा। आपने देखी सकें कि अपने खेतरा में घनी एवी चीजें हैं जिनों नो ध्यान रखवो अपने ने जरूरी रहे है। तो आज कार्यक्रम में हमारी आप तक की अना विषय माते घना कानी बातें थाएंगा, पर कार्यक्रम शुरू कर इन्हें पहले आपने हमरा विदा की इतने मौरे कर अपनी बातें। तो किसान भाई बुन आप हमर तरह जू आप रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

किसान भाई बोनो गीत तो आयशो पुरू ने अणस गीत बात एक वगत फिरी आप सब नु घणे मान स्वागत कर रहा अमारे आज ने कार्यक्रम खेती बाड़ी में जिम की किसान भाई बोनो अमे आपने गीत की पहले विषय बताड़ियो तू के आज आपणे बात करवा वाला हूं कि आपणे खेतर में अवड़ेना टाइम में आपणे कई कई बातनु ध्यान राखवू सु है। तो किसान भाई बोनो अणा विषय माते जानकारी आलवा बल्ले आज आपणे स्टूडियो में पधारे तक हैं श्रीमान प्रमोद जी रोकड़िया साहब

0: તો સપ્તાહ કી પહેલા આપણે હામરી લણાની વાત હૈ મોરેકર આપણી વાત હૈ સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મે
1: વાગડ રેડિયો કે સભી કિસાન ભાઈ ઓર શ્રોતાગણ સભી કો બહોત બહોત નમસ્કાર
0: જૈસા કે સર હમ દેખ રહે હૈ કે અગસ્ત કા મહિના ચલ રહા હૈ ઓર ઇસી બીચ હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ ઉનકી ખેતી મે કહી સારે પરિવર્તન ઉન્હે દેખને કો મિલતે હૈ હમ દેખતે હૈ કે અભી કે સમય મે ઉનકી ખેતો મે જો કીટો કા પ્રકોપ હૈ વો ભી બઢ જાતા હૈ ખરપતવાર ભી હો જાતા હૈ સાથ હી ઉન્હે કભી કભી ખેતો મે ફસલો કી તરફ સે કોઈ સમસ્યા ભી હોને લગતી હૈ તો આજ કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે હમ આપસે જાનના ચાહેંગે કે કિસ તરીકે સે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો અભી કે સમય મે અપની ફસલો કી દેખભાલ કરે
1: કિસાન ભાઈઓ અભી ખરીફ કા મહિના ચલ રહા હૈ ઓર બારિશ કે આધાર પર અપની ખેતી ચલ રહી હૈ તો જો હમને અભી જો અપને ખેતો પર ફસલ કી હુઈ હૈ જૈસે કે મક્કા કી હુઈ હૈ સોયાબીન કી હુઈ હૈ ધાન કિયા હુઆ હૈ ઇસકે અલાવા હમારે મિશ્રિત ફસલ કે અંદર મિશ્રિત ખેતી જો હમ કરતે હૈ તો ઉસમે હમને કઈ સારી ફસલે હમારે ખેત મે છોટે સે જો બીઘા દો બીઘા ઓર પાંચ બીઘા કે ખેત હૈ ઉસમે કઈ સારી ફસલો કા સમાવેશ કિયા હુઆ હૈ જો ઉસકો અપન મિશ્રિત ખેતી કહે રહે હૈ જિસમે મક્કા ભી હૈ ધાન ભી હૈ તિલ ભી હૈ મૂંગફલી ભી હૈ ઓર ઇસકે અલાવા જિતને કપાસ ભી હૈ સોયાબીન ભી હૈ કઈ સારે ખેત હમારે જો કુશલગઢ સાઇડ મે યા આનંદપુરી યા સજ્જનગઢ કી તરફ હૈ જહાં પર બારિશ કે આધાર પે જ્યાદાતર ખેતી હોતી હૈ વો મિશ્રિત ફસલ કી ખેતી ભી કરતે હૈ તો ઇસ સમય જો ક્યોંકિ બારિશ કા ભી મૌસમ ચલ રહા હૈ ઓર ફસલોં કે અંદર ફૂલ આને કે અભી સમય આને વાલા હૈ
0: જી બિલકુલ
1: કઈઓ મે ફૂલ આ ભી ગયા અગર જલ્દી બુવાઈ હુઈ હૈ જૈસે જૂન કે અંદર બુવાઈ હુઈ આખિર મે તો ફૂલ આ ભી ગયે લેકિન અગર લેટ હૈ તો ફૂલ આને કી બાત ભી હો રહી હૈ તો ઇસ સમય મે હમે જો બારિશ કે આધાર પર ખેતી કરની પડ રહી હૈ ઓર બારિશ કે આધાર પર હમે જો હમારા ખેત કા તો સબસે મુખ્ય જો હૈ વો ખરપતવાર નિયંત્રણ હો જાતા હૈ ક્યોંકિ અગર ખરપતવાર કા જો પ્રતિસ્પર્ધા ફસલ કે સાથ મે જો હમારી મુખ્ય ફસલ કે સાથ મે અગર ખરપતવાર અગર લગ રહે હૈ તો હમારા જિતના ભી આદાન યા જિતના ભી હમ ખાદ હૈ યા ફસલ પર દવાઈ હૈ યા હમ ફસલ કે લિયે મુખ્ય ફસલ કે લિયે દેતે હૈ લેકિન વો હમારી ખરપતવારો કે જો પૌધે હૈ ઉસમે ઉપયોગ કે લિયે હો જાતી હૈ
0: જી બિલકુલ
1: તો ઉસમે ક્યા હમારા જો જિતના ભી હમારા ઉર્વરક હૈ જિતના ભી હમ ચાહે જૈવિક ઉર્વરક દેતે હૈ તો ઉસમે હમારા ઉન ઉર્વરકો કા બંટવારા રહેતા ઓર વો ખરપતવાર ઉસમે જ્યાદા હિસ્સા લે લેતે હૈ
0: જી બિલકુલ
1: તો જબ ફસલ ઓર ખરપતવાર કા જો પ્રતિસ્પર્ધા હોતી હૈ ઉસકે ચલતે હમારી જો મુખ્ય ફસલ હૈ ઉસકી ઉપજ મે કમી આ જાતી હૈ
0: જી હાં
1: તો ઇસકે ચલતે હમે ખરપતવારો કો બિલકુલ ખેત સે હટા કે રખના ચાહિયે મુક્ત રખના ચાહિયે ઓર સમય સમય પે હમે ઉસકે નિયંત્રણ કે લિયે ઉપાય ભી કરને ચાહિયે અભી જૈસા કે અપન દેખતે હૈ કે મક્કા કી ખેતી હૈ મક્કા મે હમ કહેતે હૈ કે મક્કા કો અગર શુરૂ કે 30-40 દિન તક અગર ખરપતવાર સે મુક્ત રખા જાય તો હમારે જો મક્કા કી ફસલ હૈ જો મુખ્ય ફસલ હૈ વો અચ્છી હો સકતી હૈ ક્યોંકિ મક્કા મે ક્યા હૈ કે ચોડી કતારે હોતી હૈ આપ દેખતે હૈ કે દો દો હાથ કી કતારે યા 60 સેન્ટીમીટર કતારે હોતી હૈ તો ઉસ 60 સેન્ટીમીટર કતારો મે ખરપતવાર કે જો પૌધે હૈ વો તેજી સે બઢતે હૈ જબકિ હમારે મક્કા કે મુખ્ય ફસલ કે પૌધે વો ધીરે ધીરે બઢતે હૈ તો જિતના ભી હમારા આદાન દિયા હુઆ હૈ તો વો ખરપતવાર કે ફસલો મે ચલા જાતા હૈ ઇસસે ક્યા હોતા હૈ અગર હમ ખરપતવારો કો નહીં હટાયેંગે તો જો મક્કા કી ફસલ હમારી દબ જાતી હૈ ઓર અગર શુરૂ મે ફસલ દબ ગઈ ઓર શુરૂ મે મક્કા કે પૌધે હમારે દબ ગયે તો હમારી આધી ઉપજ કા નુકસાન હોને કી સંભાવના હોતી હૈ
0: જી હાં
1: તો ઇસકે લિયે સબસે હમે ખરપતવારો કા નિયંત્રણ અતિ આવશ્યક હૈ અબ જબ મિશ્રિત ફસલ કરતે હૈ તો મિશ્રિત ફસલ કે જૈસે અપન બાત કર રહે હૈ કે ઉસમે હમ કઈ સારી ફસલો કા સમાવેશ કરતે હૈ અપને ખેત મે તો હમ જો બીજ કે જો જગહ હૈ જૈસે અપન દો હાથ કી કહે રહે હૈ મક્કા સે મક્કા કે બીચ મે દો હાથ કી જગહ તો ઉનકી જગહો પર ભી હમ અપની દૂસરી ફસલ લગા લેતે હૈ
0: જી બિલકુલ
1: તો ઉસમે ક્યા હોતા હૈ કે વો ફસલ ક્યોંકિ ખરપતવારો કી ફસલ નહીં હૈ તો અગર ઉસમે ઉસકે અંદર થોડા સા જો હમારા આદાન હૈ વો જાતે ભી હૈ તો હમે ઉસસે ભી ફસલ કા હમારા ઉપજ પ્રાપ્ત હો જાતી હૈ તો ખરપતવારો કી જગહ હમ અગર ઉન મુખ્ય ફસલોં કે સાથ મે જો અંતર ફસલ લગા લેતે હૈ તો ઉસકા ભી હમે ફાયદા હોતા હૈ તો ઇસ તરહ સે ખરપતવારો કી જગહ પર હમે દૂસરી ફસલ લગા લે તો હમે વો ફાયદા હૈ ઓર ખેત ભી હમ જૈસે દેખતે હૈ કે ખેત હમારે બહોત હી લિમિટેડ હૈ એક સાઇઝ ઉનકે જિતને ભી અપન દેખતે હૈ કે હમારા ખેત કે જિતના આકાર હૈ વો એક સીમિત હૈ અગર વો 2 બીઘા હૈ તો 2 બીઘા હૈ બઢતા નહીં હૈ 3 બીઘા હૈ તો 3 બીઘા હી હૈ બઢને વાલા નહીં હૈ તો હમે હમારા જો આજીવિકા ચલાને કે લિયે ઉસી ખેત પર હમારે ફસલે આધારિત હોતી હૈ તો કઈ બાર જો અપન દેખતે હૈ કે બરસાત જ્યાદા હો રહી હૈ યા બરસાત કમ હો રહી હૈ તો હમારી જો ફસલ હૈ ઉસમે નુકસાન ભી હો જાતા હૈ કભી ક્યોંકિ હમારી સારી ખેતી બારિશ કે આધાર પર હો જાતી
0: હૈ
1: તો બારિશ કે આધાર પર હોને સે ક્યા હોતા હૈ કે અગર બારિશ બહોત જ્યાદા હુઈ તો ફસલ ગલને કી સમસ્યા હો ગઈ બારિશ કમ હો ગઈ તો ફસલ મે જો પેદાવાર હૈ વો કમી આને की संभावना रहती है। तो इसीलिए हम कहते हैं मिश्रित फसल लें, तो मिश्रित फसल में क्या कई सारी फसलें होती है जिनके पौधों का पानी के रिक्वायरमेंट अलग अलग
0: अलग अलग होती है।
1: तो उसमें क्या होता है कि हमें अगर कम ज्यादा बारिश होने के कारण भी अगर मुख्य फसलों में अगर नुकसान होता भी है तो हमारी जो सहयोगी फसल है उससे हमें उपज मिल जाती है। तो उसमें हमें खरपतवार का नियंत्रण भी हो जाता है और हमारी जो अंतर फसल उसका भी लाभ मिल जाता है। इसके साथ में भी क्या होता है कि कई बार जड़े का भी होता है। अभी हम देखते हैं कि बारिश अगर लगातार है तो हमें खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता, हमारी निराई गुड़ाई का प्रॉपर नहीं हो पाता। तो निराई गुड़ाई प्रॉपर नहीं होगी तो उससे क्या होगा कि जड़ों का विकास नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें खरपतवार का नियंत्रण और निराई गुड़ाई समय समय पे करते रहना चाहिए। इस बार अपन ने देखा कि शुरू में तो बारिश खूब आ गई, लेकिन अभी अपन देख रहे हैं कि 5-7 दिन से बारिश में कमी आई है। यद्यपि जो हमारे दानपुर वाले क्षेत्र हैं या सज्जनगढ़ कुशलगढ़ के क्षेत्र हैं उसमें बारिश की अभी भी आ रही आवक है, लेकिन कुछ जो हमारे बांसवाड़ा के या जो डूंगरपुर के अन्य क्षेत्र हैं उसमें पानी में अभी इस सप्ताह कम आ रहा है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो हमें ये समय जिसमें थोड़ा सा अभी बारिश की अभी संभावना कम है तो उस समय को हमें उसका लाभ लेना चाहिए और हमारे उस समय फसलों के अंदर निराई गुड़ाई और करके खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। और खेत के अंदर अगर हम कुदाली चलाकर उसमें थोड़ी सी गुड़ाई कर लेते हैं तो उसमें जो जड़ों के अंदर हवा और जो धूप है जो हमारा तो वो चली जाती है, प्रकाश भी प्रॉपर मिलेगा। सूरज का प्रकाश है वो प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। तो अगर सभी पौधों के पास में सूरज का प्रकाश पहुंचता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण से जो प्रकाश ऊर्जा मिल रही है तो उससे हमारे मुख्य फसल के अंदर प्रोटीन बनने की मात्रा में ज्यादा हो जाती है।
0: जी,
1: तो क्योंकि जो हमारे पोषण है जो हम खाते हैं भोजन में तो वो प्रोटीन के माध्यम से बनते हैं और वो नाइट्रोजन का कन्वर्ट होकर प्रोटीन बनता है।
0: जी, जी।
1: तो उसके लिए धूप है, हवा है, इस तरह से पौधे के बढ़वार में आवश्यक हो जाती है, खाद की भी आवश्यकता होती है। अभी अपन देखते हैं मक्का का खेत है, जब हम फूल आने की अवस्था पे होता है तो उसमें हमें देखते हैं कि उसमें नत्रजन की उर्वरक की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे का जो पूरा ध्यान है वो फूल बनाने पर चला जाता है। किसी फसल में जो फूल क्या अपन सामान्य कहते हैं कि फूल के आने के समय में उर्वरक की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम जैविक जब हम आदान देते हैं उस समय हम अगर अपना चाहे तो पत्तों पर छिड़क कर हम अपना पंचगव्य है या पंचामृत है या जितना भी हम जो देते हैं हमारा जैविक आदान है वो दें, ताकि उसमें हमें उस समय पौधों पर नत्रजन फास्फोरस जो हमारे मुख्य है आदान की कमी ना हो। खेत का अपन देखा कि अपने तब देख FIM वगैरह जो अपना देसी खाद डाला हुआ है तो अगर हमने अच्छी तरह से किया है तो पौधों में उसकी बढ़वार होने के लिए और उसके जड़ों की जो बढ़वार होने के लिए वो एक लाभकारी माध्यम हो जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस तरह से अपन देखते हैं कि खेतों के अंदर खरपतवार का काफी अच्छे से नियंत्रण किया जाता है।
0: जी बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दी है कि किस तरीके से खरपतवार का उन्हें नियंत्रण करना है। जैसा कि सर आपने बताया कि मक्का की खेती और जो भी ऐसे खेत हैं जहां पर बीच बीच में जो जगह खाली रह जाती है वहां पर वो मिश्रित खेती कर सकते हैं जिससे खरपतवार उगने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाए। तो हमारे किसान भाई बहन हैं वो इन बातों को ध्यान में रखें। और इसी के साथ जैसा कि सर आपने बताया कि बारिश जो है वो कभी बहुत ज्यादा निरंतर आती रहती है तो उस समय हमारे जो किसान भाई बहन हैं उन्हें खरपतवार नियंत्रण करने में भी कठिनाई होती है क्योंकि वो निराई गुड़ाई करने के लिए खेतों में नहीं जा पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो किसान भाई बहन हैं अगर मिश्रित खेती करते हैं और उन्हें जैसा लग रहा है कि खरपतवार हो भी रहे हैं तो उसकी वो अगर निराई गुड़ाई कर दें तो उनका जो उत्पादन है उसमें उन्हें कमी नहीं महसूस होगी। और जैसा कि हम आपके माध्यम से जान पाए कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं अगर मिश्रित खेती करते हैं तो अगर बारिश कम हो रही है ज्यादा हो रही है तो भी उन्हें उसका जो उन्हें पर्याप्त मात्रा में उत्पादन मिलना चाहिए वो उन्हें मिल पाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ में भी अपन देखते हैं कि अगर हमने खरपतवार हटा रखे हैं तो जो हमारा कीड़ों का नियंत्रण भी हो पाता है। कीड़े क्योंकि जब कीड़ों का क्योंकि हम खेत में जा नहीं पाते तो कुछ फसलें ऐसी होती है कि खरपतवारों के जिसपे कीड़े का प्रकोप ज्यादा होता है। कीड़े का प्रकोप उस पर ज्यादा होगा तो हमारी मुख्य फसल पे भी हो जाएगा। तो उसके लिए भी हमें क्योंकि जैसे अपन कहते हैं ना अवरोध फसलें ऐसी होती है कि जिसमें हमारी मुख्य फसलों के बीच में कोई अवरोध होता है तो उसको भी लगाना है। कुछ ऐसी फसलें होती है आकर्षण वाली फसल जैसे अपन देखते हैं कि हम कपास के अंदर भिंडी की फसल लगाते हैं। तो भिंडी की फसल क्यों लगाते हैं क्योंकि उस पे कीड़े का प्रकोप भिंडी पे ज्यादा होता है। हमारी जो मुख्य फसल है कपास उस पे वो प्रकोप कम पड़ता
0: है
1: क्योंकि जो हमारे कीट वगैरह जितने भी उनकी संख्या जो है वो नियंत्रण में होनी चाहिए। अगर हम नियंत्रण में होगी या तो हम उसको अपन रसायन के माध्यम से उसको खत्म करें या हम ऐसी विधियां रखें जिससे हमारे खेतों पर वो कीड़े आए ना। तो उसको कहते हैं एस्केप मैकेनिज्म या बचाव का लिया चुके थे। तो बचाव की प्रक्रिया करने से क्या होता है कि जो हमें एनवायरमेंट में जो हमारे वातावरण में जो कीट की जो संख्या है वो बनी रहती है, लेकिन हमारी फसलों को वो नुकसान
0: नहीं पहुंचता है।
1: तो इसे हम कहते हैं कि आपने कहते ना बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, इसका भी संरक्षण कर रहा
0: जी जी।
1: इन जैव विविधता के संरक्षण के लिए हमें बचाव वाली खेती को करने की आवश्यकता ज्यादा हो जाती है। कीट का नियंत्रण अगर हम सीधा सीधे किसी कीड़े को मार सकते हैं, लेकिन मारने से हमें उसकी जीव की उस कीड़े की प्रजाति को कम कर जाते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: लेकिन हमें कीड़े की प्रजाति से हमारे दुश्मनी नहीं है या नाराजगी नहीं है, हमारा तो हमारी फसलों पर नुकसान ना हो
0: जी बिल्कुल।
1: तो इस तरह से हम अपनी खेती का प्रबंधन भी करते हैं
0: जी,
1: उस प्रबंधन के माध्यम से कीट का नियंत्रण भी करते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि जब हम जैविक खेती कर रहे हैं तो हम ना जो नीम के जितने भी वो हैं
0: जी बिल्कुल
1: कीटनाशक उनका प्रयोग करते हैं, ताकि वो नीम के कीटनाशक प्रयोग करने से क्या है कि हमारी जो मुख्य फसलों पर उन कीटों का प्रकोप
0: कम हो जाए जी बिल्कुल।
1: और हमारा जो उसका पौधे का जीवन चक्र वो पूरा हो जाता है, जीवन का पूरा चक्र होने से हमारी जो अपना उपज है वो प्रॉपर मिल पाती है
0: जी बिल्कुल।
1: तो उसमें क्या कीट भी बना रहता है और हमारी फसलों को भी नुकसान
0: नहीं होता है।
1: तो इसमें खरपतवार भी है, कीट नियंत्रण के लिए हमारा जैविक जो कीट उपचार के लिए तरीके भी हैं वो करने चाहिए। और जो बारिश भी आ रही है तो बारिश में भी अपन देखते हैं कि बारिश के अंदर भी खेत में से पानी निकालते रहे, क्योंकि अगर पानी खेत में बना रहेगा तो जो खेत में है जो जितने भी उसमें जो जमीन से मिट्टी से जितना उर्वरक है उसके वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे
0: जी,
1: क्योंकि वो पानी के माध्यम से सब गल जाते हैं। तो इसलिए खेतों में पानी की मात्रा भी बनी नहीं रहनी चाहिए, खेतों में पानी निकलना चाहिए। हाँ, धान के अंदर हम कहते हैं कि धान में वो खेत पानी से भरा हो, क्योंकि उसमें जड़ों का प्रक्रिया अलग से होती है। वो जड़ें क्या है, जड़ें उसके मिट्टी जो होती है जमी हुई मिट्टी उसमें से वो ऑक्सीजन की प्राप्त करती है
0: जी,
1: तो इसलिए उसमें तो धान के लिए व्यवस्था अलग है। लेकिन धान के अलावा जितने भी हमारी फसलें हैं उसमें हम ये मानते हैं कि ज्यादातर खेत में पानी ना जमा रहे। अगर जैसे बरसात आए तो कोई ऐसे नदी नाले से या ऐसे नालियां बनाए ताकि वो खेत में से पानी का निकास होता रहे। ये भी है कि निकास के समय ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी बह के नहीं चली जाए
0: जी बिल्कुल।
1: इसलिए किसान भाई जो हमारा है कई सारी चीजों को ध्यान रखते हुए अपने खेत का प्रबंधन करता है कि उसकी मिट्टी बची रहे, पौधा भी बचा रहे, खेत की उर्वरकता शक्ति बनी रहे और जो हमारी उपज है वो भी प्राप्त हो, और जो हमारा जो सीमित खेत है उसमें हम अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर पाए, ये प्रबंधन करने हमारी आज की आवश्यकता है
0: जी बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और आपने हमारे किसान भाई बहनों को खेती से जुड़ी ढेर सारी बहुत अच्छी जानकारी दी।
1: धन्यवाद।
0: जिम के किसान भाई बहनों अवड़े अपने वैस में प्रमोद जी सर जुड़े तक हता ने एना आपड़ा ने घनी असल तरीका तक बता दीदू है की हरते आपड़ा ने अवड़े ना टाइम में अपने खेतर नु ध्यान रखू सु। तो किसान भाई बहनों आज नानी मोटी बातें हती जे आपड़ा ने ध्यान में रखवी सु। तो आशा कर हूं कि आप भी हंगरी बातें ध्यान में रखोगा, क्योंकि आपड़े देख हूं किसान भाई कि अपनी जरा सी लापरवाही जो है ये अपने खेतर ने उत्पादन में अपना ने कमी करी दे है। तो अपना ने अनी सब बातों नु ध्यान रखवू होगा ने अपनू जो उत्पादन है ये अपना ने अपना खेतर तक ही असल तरीका तक ही लेवो होगा। तो किसान भाई बहनो आज के कार्यक्रम में हमारी अब तक की बातें तो घना कनी थी गई है, अभी टाइम भी थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो। तो अपने सूटा तो पड़ा पर साथ पहले हमरी लाइक और गीत मोरे पड़ा सूटा

किसान भाई बहनों अणस गी थाते अमे कार्यक्रम खेती बाड़ी तकी पड़ा सूट। आशा कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आप तक जे भी बातें रही है ये आपने गमी होगा। तो किसान भाई बहनों आपने अमरु आज नो आ कार्यक्रम केवु लाग्यु एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली सको अमरे अणा पता माते। हमारो पतो है कार्यक्रम खेती बाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिनकोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी सको अमरे अणा फोन नंबर माते। अमरु फोन नंबर है 9460051234। तो किसान भाई बोनू फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक नवे शने हाथी तारुदी राम राम राम राम।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा, आपड़े आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
4: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संसद।

0: दोनों घर तक ही निकलते वक्त कोई आपड़ो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो।
0: एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपड़ो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिरी कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों हम बात करने वाले हैं। जैसा कि कल हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तो आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि अंजलि, स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन देश की आजादी के लिए समर्पित किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम आजादी के इस अमूल्य उपहार की रक्षा करें और देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। तो साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, हमारे कर्तव्य क्या है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि, आजादी हमें विरासत में मिली कोई साधारण वस्तु नहीं है, बल्कि लाखों बलिदानों, संघर्षों और त्याग की अमूल्य देन है। इस आजादी को पाने के लिए किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना परिवार छोड़ा, किसी ने सुख सुविधाओं को, किसी ने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है श्रोताओं, बल्कि आत्मचिंतन और अपने कर्तव्य को याद करने का अवसर भी है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ति जी, 15 अगस्त की सुबह जब तिरंगा खुले आसमान में लहराता है और राष्ट्रगान की धुन वातावरण में गूंजती है, तब हर भारतीय के मन में गर्व की भावना जागती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पूछने का अवसर देती है कि क्या केवल स्वतंत्र होना ही पर्याप्त है या स्वतंत्रता को मजबूत बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ श्रोता साथियों, आजादी के वर्षों बाद भारत ने अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने अपनी मजबूत पहचान भी बनाई है। लेकिन जागृति जी, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं होती है। देश तब मजबूत बनता है श्रोता साथियों, जब उसके नागरिक जागरूक, जिम्मेदार, ईमानदार और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है श्रोता साथियों, अपने जीवन, समाज और राष्ट्र के भविष्य को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी समझना।
1: जी जी,
0: हम देखते हैं अंजलि कि हमें अपने अधिकारों पर गर्व है, लेकिन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं। हमें शिक्षा का अधिकार मिला है तो शिक्षा के महत्व को भी समझना होगा श्रोताओं। हमें स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है तो स्वच्छता भी हमें ही बनाए रखनी होगी।
1: बिल्कुल,
0: ये हमारी ही जिम्मेदारी है। और हमें अपनी बात कहने की स्वतंत्रता है तो दूसरों के विचारों का सम्मान करना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमें केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि देश ने हमें क्या दिया, बल्कि यह भी सोचना चाहिए कि हमने देश के लिए क्या किया और आगे क्या कर सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, अब बात आती है देश की एकता और अखंडता बनाए रखने की। तो श्रोता साथियों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियाँ, परंपराएं, खान पान और जीवन शैलियाँ हैं।
0: जी हाँ,
1: यही विविधता जागृति जी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस विविधता का सम्मान करें और एकता को मजबूत बनाएं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या किसी अन्य आधार पर भेदभाव करने के बजाय हमें एक दूसरे के साथ सम्मान और भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, क्योंकि जब देश के नागरिक एकजुट रहते हैं तो कोई भी चुनौती देश को कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए एक भारत, श्रेष्ठ भारत की जो भावना है वह केवल नारे तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार में उतारना भी इसे जरूरी है।
0: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, भारत का संविधान हमें अधिकार देता है और हमारे कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। एक जिम्मेदार नागरिक वही है जो संविधान और कानून का सम्मान करे।
1: बिल्कुल,
0: नियमों का पालन केवल डर के कारण नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी की भावना से होना चाहिए। यातायात नियमों का पालन करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब हम छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं, तब हम देश की व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना योगदान देते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ बात आती है स्वच्छता की। तो श्रोता साथियों, स्वच्छता किसी एक व्यक्ति, संस्था या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सड़क पर कचरा न फेंकना, कचरे को उचित स्थान पर डालना, प्लास्टिक के अनावश्यक उपयोग को कम करना और अपने आसपास साफ सफाई रखना, ऐसे छोटे कदम हैं जिसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हम यह संकल्प ले सकते हैं कि अपने घर से लेकर अपने गांव, अपने मोहल्ले और सार्वजनिक स्थानों तक स्वच्छता का हम ध्यान रखेंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमारे कर्तव्य को याद करें और उन कर्तव्यों का पालन करें।
1: बिल्कुल,
0: ये बातें निरंतर ऐसे ही बनी रहेंगी कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हम जान पा रहे थे कि किस तरीके से हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर हमें याद करने हैं, जिसमें हमने जाना देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, संविधान और कानून का सम्मान करना, साथ ही स्वच्छ भारत की जिम्मेदारी।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ एक और जिम्मेदारी जुड़ती है, जल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना। जी हाँ श्रोता साथियों, पानी जीवन का आधार है। आज जल संरक्षण केवल पर्यावरण का विषय नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न भी है। पानी की हर बूंद को बचाना हमारा कर्तव्य है। अनावश्यक रूप से पानी बहने से रोकना, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: इसी कारण पेड़ पौधों, जंगलों, मिट्टी और जीव जंतुओं की रक्षा करना भी जरूरी है। प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि जल और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं, यही हमारे श्रोता साथियों को बताते हैं कि शिक्षा को भी हमें अपना हथियार बनाना होगा।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, शिक्षा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है। शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
0: जी जी,
1: हम केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और समझ विकसित करने के लिए भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। बच्चों को विद्यालय भेजना होगा, पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करनी होगी और जो बच्चे शिक्षा से दूर हैं उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित भी करना होगा।
0: जी,
1: ये हमारी और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एक शिक्षित समाज जागरूक समाज बन सकता है और जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, राष्ट्र निर्माण केवल बड़े बड़े कार्यों से नहीं होते हैं। ईमानदारी से किया गया हर छोटा काम देश के निर्माण में योगदान देता है।
1: बिल्कुल,
0: अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, गलत रास्तों से बचना, सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग न करना और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना सच्ची देशभक्ति है।
1: जी हाँ।
0: यदि हर व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी से करने का संकल्प ले तो देश की अनेक समस्याएं अपने आप कम हो सकती हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल श्रोता साथियों चुनाव तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ है जिम्मेदारी, सहभागिता, संवाद और दूसरों के विचारों का सम्मान करना।
1: बिल्कुल,
0: एक जागरूक नागरिक को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी होनी चाहिए। हमें अफवाहों और गलत सूचनाओं पर तुरंत विश्वास करने के बजाय तथ्य जांचने की आदत विकसित करनी चाहिए। लोकतंत्र में हमारी आवाज तभी मजबूत होगी जागृति जी, जब हम जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, आज मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा, संचार और जानकारी को बहुत आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है।
0: बिल्कुल,
1: सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को बिना जांचे आगे बढ़ाना बहुत गलत सूचना को फैलाने का कारण बन सकती है। इसलिए श्रोताओं, डिजिटल माध्यमों का उपयोग समझदारी से करना होगा। हमें तकनीक को ज्ञान, शिक्षा और सकारात्मक संवाद का माध्यम बनाना होगा। डिजिटल दुनिया में भी वही नियम लागू होते हैं जो वास्तविक जीवन में सम्मान, जिम्मेदारी और सावधानी बरतते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, अब यही बात आती है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की। श्रोता साथियों, सड़कें, विद्यालय, अस्पताल, पार्क, बसें, सरकारी भवन और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं किसी एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरे समाज की संपत्ति है। दीवारों को गंदा करना, सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाना या सुविधाओं का गलत उपयोग करना वास्तव में अपने ही संसाधनों को नुकसान पहुंचाना है।
1: बिल्कुल,
0: हमें ये समझना होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना भी देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण रूप है। देश की प्रगति में नागरिकों की आर्थिक भूमिका भी महत्वपूर्ण है। हमें मेहनत, कौशल और नवाचार को महत्व देना चाहिए। स्थानीय उत्पादों, स्थानीय कारीगरों और स्थानीय ज्ञान को प्रोत्साहन देकर हम अपने समुदाय की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, व्यापारी, कलाकार, इसी के साथ जागृति जी विद्यार्थी और प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य करके देश के विकास में योगदान दे सकता है। भारत की शक्ति केवल बड़े शहरों में नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि गांवों और छोटे कस्बों में बसती है।
1: बिल्कुल अंजलि, एक मजबूत राष्ट्र वही है जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। किसी जरूरतमंद की सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बच्चों की शिक्षा में सहयोग देना और समाज में कमजोर लोगों के प्रति संवेदनशील रहना हमारे मानवीय कर्तव्य का हिस्सा है। हमें ऐसा समाज बनाना है जहां किसी व्यक्ति को अकेला महसूस न हो और जहाँ सहयोग की भावना मजबूत हो। श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या हमें उन वीरों को याद करने का अवसर देती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उनका सम्मान केवल उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं होना चाहिए।
2: बिल्कुल।
1: उनके जीवन से हमें साहस, त्याग, अनुशासन, देश प्रेम और संघर्ष की प्रेरणा लेनी होगी। आज हमारी जिम्मेदारी है कि जिस स्वतंत्र भारत का सपना उन्होंने देखा था उसे मजबूत बनाने में हम अपना योगदान किस तरह से दे सकते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि देश का भविष्य उनके युवाओं के हाथों में है। युवा ऊर्जा, विचार, तकनीक और नए सपनों की शक्ति रखते हैं।
1: बिल्कुल।
2: युवाओं को केवल रोजगार पाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले नागरिक के रूप में भी अपनी भूमिका समझनी चाहिए। नई चीजें सीखना, कौशल विकसित करना, नवाचार करना, समाज की समस्याओं को समझना और उनके समाधान में योगदान देना युवा शक्ति की पहचान बन सकता है।
1: बिल्कुल।
2: कई बार हम सोचते हैं कि देश के लिए कुछ बड़ा करना ही देशभक्ति है, लेकिन श्रोता साथियों, वास्तविकता यह है कि राष्ट्र निर्माण छोटे छोटे कदमों से होता है।
1: बिल्कुल।
2: एक व्यक्ति पानी बचाता है तो दूसरा पेड़ लगाता है। कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो कोई शिक्षक बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। कोई किसान मिट्टी और पानी की रक्षा करता है तो जागृति जी, कोई नागरिक सड़क पर नियमों का पालन करता है। ये सभी देश निर्माण के कार्य हैं। श्रोता साथियों, यदि करोड़ों नागरिक अपने छोटे छोटे कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं तो उनका सामूहिक प्रभाव बहुत बड़ा होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या हमें अतीत के बलिदानों, वर्तमान की जिम्मेदारियों और भविष्य के सपनों के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया, अब इस स्वतंत्रता को सुरक्षित, मजबूत और सार्थक बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
2: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, तिरंगा तभी गर्व से लहराएगा जब उसके नीचे रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य को समझेगा। देशभक्ति केवल नारों में नहीं, हमारे व्यवहार में भी दिखनी चाहिए। ये केवल 15 अगस्त का उत्सव नहीं बल्कि वर्ष के हर दिन की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो आइए इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम स्वयं से एक सवाल पूछें कि मैं अपने देश के लिए आज क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, क्योंकि देश बदलने की शुरुआत किसी और से नहीं, हमसे होती है। आइए स्वतंत्रता के अमृत को जिम्मेदारी के संकल्प से सींचे और ऐसा भारत बनाने में अपना योगदान दे जहाँ विकास के साथ संस्कार हो, अधिकारों के साथ कर्तव्य हो, प्रगति के साथ प्रकृति की रक्षा हो और विविधता के साथ एकता हो।
2: बिल्कुल। तो जागृति जी, यही स्वतंत्रता का सम्मान है, यही सच्ची देशभक्ति है और यही हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।
1: बिल्कुल।
2: आजादी का उत्सव मनाएं, कर्तव्य का दीप जलाएं, अपने छोटे छोटे प्रयासों से भारत को और मजबूत बनाएं।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: श्रोता साथियों, एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। इसके जरिए भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी जागृति भट्ट
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को।
0: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: साथियों, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, अपनी सेहत का रखें ध्यान। आंखें हैं अनमोल हमारी, इनसे है रोशन सारा जहां।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, इन्हीं प्यारी सी पंक्तियों के साथ में आप सभी का स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार कीजिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर। लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
1: जी बिल्कुल
0: साथियों, हम अपने घर की साफ सफाई पर ध्यान रखते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं और बीमार होने पर इलाज भी करवाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी अपनी आँखों को उतनी ही देखभाल करते हुए देखा है अपने आप को? क्योंकि हम देखते हैं कि आंखें हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है।
1: जी हाँ,
0: इनकी मदद से हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं, खेतों में काम करते हैं, रास्ते पहचानते हैं, किताबें पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं और अपने परिवार के चेहरों की मुस्कान महसूस करते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन मनीषा, आज मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर और लगातार स्क्रीन देखने की आदत के कारण आंखों पर दबाव बढ़ रहा है। धूल, मिट्टी, धुआं, तेज धूप, पर्याप्त नींद न लेना, आंखों में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करना भी आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
1: बिल्कुल,
0: तो आज का हमारा कार्यक्रम का सवाल ये है कि आखिर अपनी आंखों को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आंखों की देखभाल कैसे करें।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि आंखें हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग हैं। इन्हीं के माध्यम से हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, रंगों को पहचानते हैं और अपने प्रिय लोगों को पहचान पाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, प्रकृति ने हमें आंखों के रूप में बहुत अनमोल उपहार दिया है, इसलिए आंखों की सही देखभाल करना हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारी है। अंजलि जी, आज के समय में मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग हमारे जीवन का हिस्सा बन गए हैं।
1: बिल्कुल
0: पढ़ाई, काम, मनोरंजन और जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रोता साथियों, हम लंबे समय तक स्क्रीन को देखते रहते हैं। इसके कारण आंखों में थकान, जलन, सूखापन, पानी आना, सर दर्द जैसी परेशानियां वो हमें महसूस होती है। इसके अलावा साथियों, धूल, धुआं, प्रदूषण, पर्याप्त नींद न लेना और असंतुलित भोजन है वो भी हमारे आंखों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आंखें हमारे शरीर की संवेदनशील संरचनाओं में से एक है।
0: जी हाँ,
1: आंखों की मदद से हमें वस्तुओं का आकार, रंग, दूरी और आसपास की गतिविधियां दिखाई देती है। इसलिए आंखों में होने वाली किसी भी परेशानी को सामान्य समझकर लंबे समय तक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: कई बार आंखों में हल्की जलन, पानी आना, थकान जैसी समस्या कुछ समय में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि समस्या बार बार हो रही है या दृष्टि में बदलाव महसूस हो रहा है तो आंखों की जांच कराना जरूरी है। आंखों की देखभाल का मतलब केवल बीमारी से बचाव नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों में भी आंखों को अनुकूल बनाना है। जैसे कि सबसे पहली बात आती है, मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल समझदारी से करें। आज मोबाइल हमारी जरूरत बन गया है। पढ़ाई, काम, जानकारी और मनोरंजन, हर चीज में मोबाइल का इस्तेमाल होता है, लेकिन लंबे समय तक बिना आराम के स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सूखापन, जलन, सिर दर्द जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए लगातार लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें, बीच बीच में आंखों को स्क्रीन से आराम दें, मोबाइल को आंखों के बहुत पास रखकर न देखें, अंधेरे कमरे में तेज रोशनी वाली स्क्रीन देखने से बचें, बच्चों को अनावश्यक और लंबे समय तक मोबाइल देने से हमें बचना है, साथ ही पढ़ाई और काम के दौरान उचित रोशनी रखें। याद रखिए कि मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन इसका गलत और जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल आंखों के लिए परेशानी पैदा कर सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें पर्याप्त नींद की, तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आंखों के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: देर रात तक मोबाइल चलाना या लगातार स्क्रीन देखते रहना नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता है तो आंखों में थकान, भारीपन और जलन महसूस हो सकती है। इसलिए श्रोता साथियों, अपनी उम्र और जरूरत के अनुसार पर्याप्त नींद लेनी चाहिए हमें, और सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग हमें कम करने का अभ्यास करना है।
1: बिल्कुल मनीषा, यही बात आती है कि हमारे ग्रामीण और वागड़ क्षेत्र में खेतों, जंगलों और खुले स्थानों में काम करने वाले लोगों को लंबे समय तक धूप में और धूल का सामना करना पड़ सकता है। तेज धूप में बाहर निकलते समय आंखों को सीधी तेज रोशनी के संपर्क में लंबे समय तक रखने से बचना चाहिए। जरूरत के अनुसार यूवी सुरक्षा वाले धूप के चश्मे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। विशेषकर खेत में काम करने वाले व्यक्ति धूल, मिट्टी और पौधों के कण आंखों में जाने से बचाने के लिए सुरक्षा चश्मे का उपयोग कर सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: आंखों की स्वच्छता श्रोता साथियों बेहद जरूरी है। चेहरा धोते समय साफ पानी का इस्तेमाल करें, आंखों को बार बार गंदे हाथों से न छुएं। अगर आंख में धूल चली गई है तो उसे जोर जोर से रगड़ने के बजाय साफ पानी से धोने की कोशिश करें। आंखों को रगड़ना नुकसानदायक क्यों हो सकता है? क्योंकि इससे आंखों की बाहरी सतह पर जलन और चोट का खतरा बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी बात, किसी दूसरे व्यक्ति का तौलिया, रुमाल या आंखों में लगाने वाली चीजें हमें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से आंखों की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सही उपाय क्या है, इसको लेकर हम बातें कर ही रहे हैं। तो ये बातें हमारे श्रोता साथियों से आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हम आंखों की देखभाल को लेकर ढेर सारी बातों को जान पाए, यही श्रोता साथियों, हम दिन भर कई चीजें छूते हैं, दरवाजे, मोबाइल, पैसे, मिट्टी, पशुओं से जुड़ी वस्तुएं और कई अन्य सामान। अगर गंदे हाथों से आंखों को छुआ जाता है तो आंखों में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: जी बिल्कुल।
0: खाना खाने से पहले, आंखों को छूने से पहले हाथों को साबुन और साफ पानी से धोने की आदत डालें। बच्चों को यह आदत बचपन से हमें सिखानी होगी। आंखों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार भी महत्वपूर्ण है। अपने भोजन में श्रोता साथियों, अलग अलग प्रकार की सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दालें, अनाज, दूध या उपलब्ध अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमें शामिल करने हैं। गाजर को आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन केवल गाजर खाने से ही आंखें पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहती।
1: संपूर्ण
0: और संतुलित आहार भी जरूरी है। इसी के साथ ग्रामीण परिवारों में उपलब्ध स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को भोजन में शामिल करके भी पोषण बेहतर किया जा सकता है। श्रोता साथियों, बच्चे और बड़े जब किताबें पढ़े या लिखने का काम करें तो पर्याप्त रोशनी होना बहुत जरूरी है। बहुत कम रोशनी में पढ़ने से मनीषा आंखों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है और आंखें जल्दी थक जाती हैं। पढ़ते समय किताब और कॉपी को आंखों से बहुत ज्यादा पास न रखें। लंबे समय तक पढ़ने पर बीच बीच में थोड़ा हमें आराम भी लेने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ बात करें कि आंखों में किसी भी तरह की हमें चीज जो डालनी होती है, दवाई, या वो हमें स्वयं नहीं डालनी है। श्रोता साथियों, इससे हम देखते हैं कि हमारे आंखों में लालिमा, खुजली या जलन होने से हमें और ज्यादा तकलीफ हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप आंखों में दवाई डालते हैं या कोई घरेलू पदार्थ डालते हैं तो हमें खुद से नहीं डालना है, इससे हमारी आंखों की समस्या है वो बढ़ सकती है। तो घर का कोई सदस्य हो पास में तो उससे भी हम अपने आंखों में डलवा सकते हैं। साथियों, किसी व्यक्ति को किसी दवा से फायदा हुआ हो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह दवा दूसरे व्यक्ति के लिए भी सही होगी। आंखों की दवा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही श्रोता साथियों में उपयोग में लेनी है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही कहना चाहेंगे कि आंखों की नियमित जांच के भी महत्व को हमें समझना चाहिए, खासकर यदि श्रोता साथियों परिवार में आंखों से जुड़ी कोई समस्या हो रही है, देखने में बदलाव महसूस हो रहा है या पढ़ने लिखने में कठिनाइयां हो रही है तो हमें आंखों की जांच करवानी भी जरूरी है। बच्चे यदि श्रोता साथियों किताबें बहुत पास लाकर पढ़ते हैं या बार बार आंखों को सिकुड़ते हैं या दूर की चीजों को श्रोता साथियों देखने में परेशानी बताते हैं हमें, तो हमें उनकी आंखों की जांच करवानी है और माता पिता को भी अपने बच्चों का ध्यान रखना है। कई बार अंजलि जी, हम देखते हैं हमारे घर के बच्चे जो होते हैं वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार वो स्क्रीन टाइम या पढ़ाई करते रहते हैं तो उन्हें लगता है कि ज्यादा देर देखने की वजह से हो रहा है। पर श्रोता साथियों, ये परेशानी आगे जाकर बड़ी समस्या बन सकती है, इसलिए हमें समय पर आंखों की जांच भी करवानी जरूरी है हमारे लिए।
0: बिल्कुल मनीषा, कई लोग कहते हैं कि अभी तो थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, बाद में ठीक हो जाएगा।
1: जी हाँ।
0: लेकिन यदि बार बार धुंधला दिखाई दे, दूर या पास की चीजें देखने में परेशानी हो, पढ़ते समय सिरदर्द हो, आंखों में दर्द या बार बार पानी आए तो आंखों की जांच करवानी चाहिए। अगर डॉक्टर चश्मा लगाने की सलाह दे तो चश्मे का इस्तेमाल नियमित रूप से करें, किसी दूसरे व्यक्ति का चश्मा अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल न करें। इसी के साथ श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आंखों को स्वस्थ रखने के कुछ आसान सूत्र हैं जो हमें याद रखने हैं।
1: जी हाँ।
0: साफ हाथ, साफ आंखें, संतुलित भोजन, बेहतर पोषण, स्क्रीन से विराम, आंखों को आराम, सुरक्षा का ध्यान, धूल और चोट से बचाव, समस्या दिखे समय पर जांच। श्रोता साथियों, आंखें हमारे जीवन की रोशनी है। हम अपने घर, खेत, परिवार, प्रकृति और इस खूबसूरत दुनिया को इन्हीं आंखों से देखते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: इसलिए आंखों की देखभाल को केवल बीमारी होने के बाद की जाने वाली गतिविधि न माने। आंखों की देखभाल रोज की छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। साफ सफाई रखना, संतुलित भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, स्क्रीन से समय समय पर दूरी बनाना, तेज धूप और धूल से आंखों की सुरक्षा करना और आंखों में किसी भी परेशानी को लंबे समय तक नजरअंदाज न करना, ये सभी हमारी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां हैं। खास बात यह है कि आंखों से जुड़ी हर परेशानी का इलाज घरेलू नुस्खों से करना जरूरी नहीं है। आंखों में लगातार दर्द, लालिमा, चोट, अचानक दृष्टि कम होना, धुंधला दिखाई देना या कोई अन्य गंभीर समस्या महसूस हो तो तुरंत हमें डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है। श्रोता साथियों, आज से ही हम एक संकल्प लें कि आंखों को नहीं रगड़ेंगे, गंदे हाथों से नहीं छुएंगे।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: तो आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवावा रामर हित्ता भाई बोने ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बोनो, आप सब हमले रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत करे हैं हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे गयो हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक नया विषय निहाते मनीषा बोन। आज अपने कार्यक्रम में भाई बोनो तक की बातचीत नो विषय है कि आ वधतु प्लास्टिक ने आनु खेती माते असर हो पड़े है। आपने देखा हो के आज ना टाइम में आ समस्या जे है ये धीरे धीरे चर्चा नु विषय बनती सही दी है। धीरे धीरे आपड़ी खेती आपड़ो पर्यावरण पशु आपड़ो स्वास्थ्य जे है ये भी प्रभावित थी रू है। आज आपने देखा हो के गांव हो या शहर बाजार हो या खेत हर ठेकने आपड़ा ने प्लास्टिक देखावा में मलीसा दूध ना पूड़ा एने साथे पानी नी बोतले चिप्स ना पैकेट ने एने साथे नमकीन ना पूड़ा ने आ सब जे है ये कुछ मिनट बल्लेस आपड़े काम में लो हो पसे आने आपड़े फेंकी दो हो ने आ आपड़ी मिट्टी ने वर्षो उधी प्रभावित करे है। तो भाई बोनो आपे कारे विचार करू है के खेतों में पड़ू आज ये प्लास्टिक है ई हरते आपड़े खेती ने आपड़े भोजन ने प्रभावित करे है। तो आज आपड़े कार्यक्रम में अणु विषय माते घणा कनी वाते करंगा कि आना हूं कारण है ने आनु प्रभाव हरते पड़े है ने समाधान ना हो उपाय थे सके पण हमने हमरा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते।
0: होवे अंजलि बोन, तो भाई बोनो हमलता रेजो आपड़ू रेडियो आपड़ी वाती वाग रेडियो 90.8 FM माते।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्व से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुनाहें चली थी गोली।

बहन बोनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित हवा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लग्या इन बल्ले आप मने राय सुझाव आली सको हमारे अणपता माते। अमरु पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमरु पिन कोड नंबर है